0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
3: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के 5:05 हो चुके हैं दोस्तों। बाहर ठंडी ठंडी सुबह है। कल की बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया है। पता नहीं आज भी बारिश मेहरबान होगी हम पे या नहीं, पर इतना ज़रूर है कि हमारे सदाबहार गीत आपकी सुबह को खूबसूरत बना देंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। शुरू करते हैं राइज एंड शाइन। बिल्कुल मैसेज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके मैसेज ही हमारी ताकत भी है और हमारी जान भी है। तो आपको सिर्फ मैसेज करना है 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने मॉर्निंग मॉर्निंग गाने।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti. Musti. Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:16 हो चुके हैं और आपके मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं।

0: थैंक यू सो मच आप सबका जो हमारे साथ इस समय राइज एंड शाइन प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और आज तो बहुत ही एक स्पेशल डे भी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड लोग हैं उनको तो ज़रूर ही पता होगा, आज है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। सोचिए अगर ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं होती तो हमारी सड़कों का क्या हाल होता। इसलिए आज जब आप रेड लाइट देखें या येलो देखें, ग्रीन लाइट देखें, तो बस सब्र रखिए, नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँचिए। आपकी और आपकी अपनों की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास भी होगा कि आपने डे भी बना लिया। और देखिए सड़कें बहुत आराम से स्मूथ चलेंगी, एंजॉय करते रहिए गानों को। और जो भी अपने घर वापस पहुंच रहे हैं काम से, जिन्होंने लेट नाइट शिफ्ट की होगी उन्हें हम बोलेंगे आराम से रेस्ट कीजिएगा, सोइएगा पर थोड़ा सा। और जो अभी जा रहे हैं उनको हम ये बोलेंगे पूरी एनर्जी लेकर जाइए ऑफिस में। बस ऑफिस पहुंचेंगे आपको लगता है एहसास होगा कि आज फिर डे हमारा है, क्योंकि इसके बाद हम एक और डे बताएंगे कि आज क्या कौन सा वाला डे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार और फायदेमंद रहने वाला। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Mustie.
2: 5:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। बस शाइन करते रहे, हम तो यही चाहते हैं और हमने उठा दिया है आपको बस ये और आप उठ भी जाते हैं टाइम से तो ये और अच्छा लगता है क्योंकि ये जो टाइम है ना इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप 7 बजे उठते हैं 8 बजे उठते हैं, मतलब जो लोग घर पर रहते हैं उनके लिए तो बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट जब जल्दी उठ जाओ तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो चलिए हम आज बात कर रहे थे कि आज एक और स्पेशल डे है जो पूरा वर्ल्ड मनाता है। थोड़ा सा मस्ती वाला नाम है पर क्या करें, हमें तो बताना पड़ता है। तो उसका नाम है आज वर्क लाइक अ डॉग डे। नाम सुनकर थोड़ा सा घबराइए मत, इसका मतलब दिन रात बस काम करना नहीं है बल्कि ये उन लोगों को सलाम करने का दिन है जो पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और जिम्मेदारी से काम निभाते हैं। तो जो आज भी कहीं जा रहे हैं या बहुत सारा काम करेंगे तो उनको बस यही कहिएगा, क्या बात है आपकी तो मेहनत बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करते हो, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो हम तो आपको बोलेंगे जो भी अब निकल चुके हैं ये सारी मेहनत ही तो करनी है, एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। इंजॉय कीजिए गाने और इस गाने के बाद आपके मैसेजेस होंगे। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है इस बीच तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर और मैं हूं आपके साथ पूनम।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:38 हो चुके हैं. प्यारा सा दिन बुधवार आ गया और 5 अगस्त भी हो गया. पता नहीं चलता टाइम कैसे निकलता चला जाता है और कैसे डेट बदलती जाती है. ऐसे ही बदलते बदलते सालों साल गुजर जाते हैं. पर जो अपने साथ हैं उनका साथ मिलते रहना चाहिए. चलिए जी, 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं प्यार भरे जो आप सबके प्यार से निकले हैं. तो ये है सुया बिहारी जी, और आज कह रही हैं कि वो सभी सीनियर सिटीजन्स एक ग्रुप बना के गौबासा की ओर जा रहे हैं और हमने लेने हैं प्रभु से बहुत सारे आशीर्वाद. तो हमें बस यही चाहिए कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाए. अरे आपका बहुत दिन अच्छा जाएगा, आपको तो हमारे लिए थोड़ी सी ब्लेसिंग्स लेकर आनी है और हम जितने भी लिसनर्स हैं उनको प्यार देना है. थैंक यू सो मच आपका इस प्यारे से मैसेज के लिए और आपका दिन शुभ रहे. ललित जी साथ दे रहे हैं और अपनी वाइफ के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि आप मेरी ताकत हो, बस अपना हमेशा ध्यान रखना. क्या ब्यूटीफुल मैसेज है. थैंक यू ललित जी, आप USA से साथ दे रहे हैं. प्रमिला जी अपने हस्बैंड रंजीत जी के लिए बस इतना कहना चाहती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. शायद मैं बोल नहीं पाती पर मेरा एहसास, अगर आपको एहसास है तो बस इतना ही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. क्या बात है, तो सो नाइस. दीपक जी अपनी वेदू जी के लिए बस कह रहे हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा खुश रहो. क्या बात है. ज्योति जी साथ दे रही हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं. अब्दुल एंड सायरा बानो जी भी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम को. साथ में हैं मुकेश जी और साधना जी लालमाटी से, और आज कह रहे हैं कि आज हम अपने बेटे को मिस कर रहे हैं. वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा था, पर आज हमारे बीच में नहीं है तो हम थोड़ा सा उदास हैं. आप उदास मत होइए, हम सब आपके साथ हैं. ज़िंदगी में कोई यहाँ नहीं रहेगा, कोई ना कोई जाता रहेगा, कोई ना कोई आता रहेगा. तो हमेशा जो आपके पास इस समय है उनका ख्याल रखिए, उनके साथ इंजॉय कीजिए. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार देते रहिए, प्यार बांटते रहिए, आपको वापस प्यार ज़रूर मिलेगा. हम तो इतना ही कहेंगे कि आपको आपका बेटा जहाँ भी है वहाँ से बस आपको मुस्कान दिखाता रहे और कोई ऐसा रूप हो कि वो वापस इस दुनिया में आए. बट जैसा लगे, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, बट हम इतना बोलेंगे मुस्कुराइए, हंसिए, जो आपके पास है उनको गले लगाइए. सूरज शर्मा साजना जी साथ दे रहे हैं और अपने परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और अपने बेटे निशाल को इतना बोलना चाहते हैं पढ़ाई कर लो. क्या बात है. जयशन जी भी साथ दे रहे हैं और अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ इंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सभी को, और हम ये बोलेंगे प्यारा सा गाना आप सबके लिए.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। उम्मीद है आज की सुबह आप सबके लिए प्यार और सुकून और ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। चलिए जानते हैं आज का होरोस्कोप आपके लिए क्या लेकर आया है।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज अपनों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। आपकी एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। दिल से किया गया हर काम आपको खुशी देगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 7।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज किसी अपने का हाल चाल पूछना मत भूलिए। छोटी सी परवाह रिश्तों को और खूबसूरत बना सकती है। आज प्यार और अपनापन आपके साथ रहेंगे। लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 2।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज किसी को दिल से सुनिए, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। आपके शब्द किसी को हिम्मत दे सकते हैं। अच्छी बातें पूरे दिन मुस्कान रख सकती है आपके चेहरे पर भी और आपके परिवार के चेहरे पर भी। लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज घर की खुशियां आपके चेहरे पर चमक लाएंगी। परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल रहेगा। अपनों का साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 6।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। आपकी दरिया दिल जीत सकती है। किसी का अच्छाई हमेशा लौटकर आपके पास वापस आती है। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज खुद का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना दूसरों का रखते हैं। थोड़ा आराम, थोड़ी सी मुस्कान भी जरूरी है। मन हल्का रहेगा तो दिन भी सुंदर जाएगा। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: आज रिश्तों में मिठास घोलने की पहल आप कीजिए। एक प्यार भरा संदेश किसी का दिल खुश कर सकता है। आज अपनापन सबसे बड़ी दौलत बनेगा आपकी। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 9।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज गुस्से से नहीं प्यार से बात कीजिए। आपकी नरमी रिश्तों को और भी मजबूत करेगी। शाम तक मन को सुकून रहेगा, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी और जो भी आपसे जुड़ेंगे वो बोलेंगे क्या इतने दिनों तक ये मुस्कान कहाँ छुपाई हुई थी। लकी कलर बनेगा ब्राउन, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज किसी नए चेहरे से अच्छी दोस्ती हो सकती है। खुले दिल से लोगों से मिलिए, अच्छी ऊर्जा आपका साथ निभाएगी। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार मिलेगा। परिवार की कोई बात दिल खुश कर सकती है। आज आभार व्यक्त करने का दिन है, बिल्कुल मत भूलिएगा। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज किसी की सच्ची तारीफ जरूर कीजिए। आपके दो अच्छे शब्द किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं। प्यार बांटिए, प्यार वापस मिलेगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज दिल की आवाज सुनिए और मुस्कुराते रहिए। किसी अपने से मुलाकात बात खुशी दे सकती है। किसी का फोन आ सकता है, किसी का ऐसा जो बहुत टाइम से कोई मैसेज नहीं आया उनका मैसेज आ सकता है। तो आज का दिन प्यार और सुकून से भरा रहेगा। लकी कलर है पीच, लकी नंबर है 12। दोस्तों, प्यार परवाह और अपनापन सभी इकट्ठा कीजिए और अपने दिन को बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बनाइए। इंजॉय कीजिए अपना गाने।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Wait, wait, wait! You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity!
4: What?
5: My name is Anthony Gonsalves.
4: Gonsalves?
5: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: ओह माय
0: राइट मैं दुनिया पे अकेला हूँ
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट, मैं

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी को हमारा नमस्कार. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी. ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया. वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर चिंता जताई गई है. सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया है. 23 बिलियन रुपए से ज्यादा का ऋण दो चरणों में मिलेगा. कल दोपहर बाद लाप्रेरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई. वहीं बोबासे के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया. गंभीर रूप से घायल पायलट को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि उसके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं. कोरल ब्लीचिंग के बीच मॉरिशस के अध्ययन से नई उम्मीद जागी है. कोरल रीफ्स के पुनर्स्थापन से 70% से ज्यादा जीवित रहने की दर दर्ज की गई है. समुद्री तट मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए कोरल रीफ्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया है. और अब मौसम संबंधी जानकारियां. मस्करेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं और पूर्व से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज दिन से मौसम पर पड़ने लगेगा. आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और दोपहर बाद को भी पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी. ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान

0: इलाकों पर 21 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को बादल घिराएंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:37 पर और शाम 5:53 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की मुख्य खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:10 हो चुके हैं दोस्तों. कभी कभी एक गाना सुनते ही पूरा एक जमाना आंखों के सामने आ जाता है. स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ मस्ती के दिन, वो पुरानी कैसेट या रेडियो, बस गाने बजते थे और बस ऐसी फील आती थी कि अरे बस आज तो स्कूल जाना है. आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, कई बार कह देते हैं अरे हमें स्कूल नहीं जाना. बट जब हमारा टाइम हुआ करता था, हमें कहते थे कि बस घर नहीं रहना, हमें स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो. क्योंकि वहाँ पता था थोड़ी मोटी डांट पड़ती थी, पर उसके बाद जो दोस्तों का साथ मिलता था वो बहुत औसम होता था. सबके साथ शैतानी करना, ये जो मॉर्निंग में होते हैं ना, जब ये दिन याद आ जाते हैं ना, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और एहसास होता है अरे वो दिन वापस आ जाए. बट हमारी एक ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई भी ज़माना आ जाए, हमें सिर्फ पास्ट याद रहता है, आगे वाला बस डिफ़िकल्ट दिखता है. तो इसलिए प्रेजेंट में रहिए, डिफिकल्ट बिल्कुल मत सोचिए. दिन जैसे भी दिन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं. जिस भी सिचुएशन में हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं. रेडियो मस्ती जब तक आपके साथ है, तब तक आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है. मेरे बाद देखिए आपको पूरे 24 आवर्स साथ मिलता है सभी आरजेस का. अलग अलग मूड के हिसाब से आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, वाउचर्स मिलते हैं, आपका दिन बनता है. और आपके साथ जो हम एनर्जी देते हैं कि आप जब काम पर जाएँ तो आपको कोई टेंशन ना हो, तो ये हमारा बस मोटिव रहता है कि आपको हंसाना और मुस्कुराने की एक वजह बनना. तो चलिए एंजॉय करते हैं. बट इन गानों के बाद आपके हम मैसेजेस पढ़ेंगे. देखें आज कौन कौन किसको किसको याद कर रहा है. एंजॉय कीजिए तब तक ये गाने.
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छह बजकर 18 मिनट हो चुके हैं और बस थोड़ी देर के बाद हम जुड़ पाएंगे हमारे विस्तार से समाचारों के साथ. बट उससे पहले ले लेते हैं आपके प्यार भरे मैसेजेस जो आपने अपनों के लिए भेजे हैं. तो चलिए आज हमारे साथ हैं स्वीटी गंगू, रवि गंगू, जिनकी आज 25th एनिवर्सरी है, और भाई विश्वनंदा जी का आज बर्थडे है. तो भारती जी उनको विश कर रही हैं और पूरा परिवार उनको विश कर रहा है. साथ में ही हैं हमारे एक और दोस्त, हैप्पी बर्थडे कमलेश बुधा जी, जो कि माबुक पूनम जी की तरफ से विश कर रहे हैं. सुनीता, संजीव, शैलवी, धनवेश्वर जी भी विश कर रहे हैं. निशा जी को, जिनकी आज 50th बर्थडे है और जो कि बाम्बू से हैं. बिडवाग विदेशी जी साथ जुड़े हुए हैं और पूरे परिवार को विश कर रहे हैं, और सभी लिसनर्स को भी विश कर रहे हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए. सोनम भोला जी काम पर जा रही हैं और कह रही हैं, अरे भाई हैप्पी बर्थडे जिनका भी बर्थडे है, और हैप्पी एनिवर्सरी जिनकी एनिवर्सरी है. मैं तो बस यही चाहती हूँ सब खुश रहें. क्या बात है. आज अजय मधु जी की 30वीं सालगिरह है, और बच्चों की तरफ से यानी कि याशना, रिचना, सभी मधुप फैमिली की तरफ से उनको विश किया जा रहा है, और उनको कह रहे हैं बच्चे कि मम्मी पापा आप बहुत अच्छे हो. हाँ, थैंक यू हमको दुनिया में लाने के लिए, और आपको आपकी वेडिंग की ये जो एनिवर्सरी है बहुत अच्छी रहे, और रात को हम लोग पार्टी करेंगे, इन्जॉय कीजिएगा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी. क्या बात है, ऐसे बच्चों की तरफ से मैसेज आए तो क्या कितना अच्छा लगता है. रवि एंड स्वीटी जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, और हेमलता जी अपने हस्बैंड विश्वनंदा जी को भी बर्थडे की विश कर रही हैं. और हेमलता जी कह रही हैं जिनकी भी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए हमेशा इंजॉय करते रहें. और साथ में आज है मिशिका का सेकंड बर्थडे. मामा वर्षा, यश्विन, दादा, दादी, नाना, नानी, मामू, मासी, जोगेश्वर फैमिली उन्हें विश कर रही हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में उन्हें कह रही हैं कि ये छोटी सी प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस का बर्थडे जो है ना, उसके लिए एक प्यारा सा ज़रूर कुछ ऐसा स्पेशल बजाइएगा जो हमारा दिल खुश कर दे. तो जल्द ही जिनका भी बर्थडे है, जिन्होंने भी हमें मैसेज किया या ना किया हो, पर हमारी तरफ से पूरी MBC की टीम की तरफ से आपके लिए जिनका बर्थडे है और जिनकी एनिवर्सरी है, उनके लिए तो कुछ और स्पेशल होगा. लीजिए

से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव।

अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव।

0: मेरा नमस्कार सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया। विग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई गई है। सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया है। 23 बिलियन रुपए से अधिक का ऋण दो चरणों में मिलेगा। विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आया। और अब पेश समाचार विस्तार से। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया। विग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Botswana a un dépassement et le pays a encore un dépassement là. Parce que pendant 10 ans, nous nous réclamons, pendant quel avantage. C'est à cause de ça qui nous a fait des efforts, qu'on comprend l'extrêmement important qui nous sensibilise la population. En général, qu'il y a un énorme problème dans le pays et qui nous a mettre la tête ensemble pour résoudre le problème. Je profite de l'occasion là pour dire aux petits qui nous fait face à la difficulté. Pendant 10

0: 10 ans qu'on est qui fait dans ce pays-là. Parfois, les mots qui disent, mais pose moi une question. Qui fait mon faire pour moi, après temps? Qui, mon gars, 60 euros, mon père, intéressé, mais la populaire, là. Bizarre faire qu'il soit bien que le pays, bizarre redresser l'économie-là, sinon, c'est tout pour son bruit. Et sa solidarité, Ban Mauritien, montre là bien important. Il y a une décision difficile. Pour le moment, il n'est pas pour éternel, ça. Mais si et si nous prenons une décision qui vise un pays là pour redresser.
1: अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन मॉरिशन रुपए से ज्यादा की बजट सपोर्ट की मांग की है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी जो वित्तीय वर्ष 2026-2027 और 2027-2028 के दौरान प्रदान की जाएगी। शैली नियबन की रिपोर्ट पर पेश है अशिटारो का विवरण।
2: ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब सार्वजनिक वित्त पर दबाव बना हुआ है। अफ्रीकी विकास बैंक के अनुसार 2024-2025 में मॉरिशस का सकल सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 88.6% तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये 83.4% था। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कर आय के बावजूद बजट घाटा जीडीपी के 8.5% से बढ़कर 9.3% हो गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने इस गिरावट के लिए सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर बढ़े हुए खर्च के साथ साथ अनुमान से कम कर राजस्व को जिम्मेदार ठहराया है। खासकर वाहनों पर लगाए जाने वाले टैक्स में सुधार के बाद अपेक्षित आय हासिल नहीं हो सकी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अब मॉरिशस के लिए संप्रभु वित्तीय दबाव यानी सॉवरेन स्ट्रेस के जोखिम को उच्च मानता है। इसी बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BA3 पर नकारात्मक दृष्टिकोण बरकरार रखा है। ये रेटिंग निवेश योग्य श्रेणी से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। ये दोनों संकेत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उन चिंताओं को दर्शाते हैं जो मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त की स्थिति को लेकर हैं। रिपोर्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये भी सामने आया है कि 30 जून 2024 तक सरकार ने स्थानीय ऋणदाताओं को 7.9 बिलियन मॉरिशन रुपए और विदेशी ऋणदाताओं को 682.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय गारंटी दी थी। सरकार का घोषित लक्ष्य अब जून 2029 तक सार्वजनिक ऋण को जीडीपी के 80% से नीचे लाना है। इसके लिए विकास को समर्थन देने वाली राजकोषीय मजबूती यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की रणनीति अपनाने की योजना है।
1: कल दोपहर बाद लाप्रेरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई। वहीं बोबासे के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया। गंभीर रूप से घायल पायलट को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। बजट 2025-2026 में घोषित VAT के पंजीकरण की सीमा को 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए किए जाने के बाद मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने 655 मिलियन रुपए की आय एकत्र की है। ये आंकड़े पहली अक्टूबर 2025 से 29 जुलाई 2026 की अवधि को दर्शाते हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने राष्ट्रसभा में PMQT के दौरान दी। वे लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इस अवधि में 8,764 नई कंपनियों ने VAT के लिए पंजीकरण कराया, जबकि सिर्फ 84 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य व्यापारिक संस्थानों के बीच ज्यादा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों इस बेस्त को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके सहयोगी एंटनी स्टीव साम को भी 21 साल की सजा दी गई है।

0: दोनों को मडागास्कर से लाई गई लकड़ी की मूर्तियों में छिपाकर 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी का दोषी पाया गया। ये फैसला 4 अगस्त को असाइजेस अदालत द्वारा सुनाया गया। लुविना सूफी, अश्रिता रकू।
1: मामला मई 2017 का है। आत्सू को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कस्टम के सहयोग से मेहोर स्थित मॉरिशस कंटेनर टर्मिनल में तमाता मडागास्कर से पहुंचे एक कंटेनर की तलाशी ली गई थी। पुलिस ने लकड़ी की कई मूर्तियों के अंदर छिपा कर रखी गई 2 किलो और 19 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत 30 बिलियन से अधिक मॉरिशन रुपए आंकी गई थी। दोनों आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। अदालत के अनुसार स्टीव गाइटों इस्बेस्टर ने मडागास्कर से पार्सल भेजने के लिए जेगॉन नाम का झूठा नाम इस्तेमाल किया था। कंटेनर में सामान लोड करने से जुड़ी औपचारिकताओं में भी उसकी भूमिका थी। उसका बचपन का दोस्त और व्यापारी एंथोनी स्टीव्स सम शिपमेंट की प्रक्रियाओं से परिचित था। अदालत का मानना है कि उसने मडागास्कर के इंटरमीडिएरी को कथित रिगाओ की विश्वसनीयता के बारे में भरोसा दिलाया, जिससे बिना पहले जांच के पार्सल भेजने में मदद मिली। न्यायाधीश लक्ष्मी प्रसाद ओजैब ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों आरोपियों की भूमिकाएं अलग अलग थीं, लेकिन एक दूसरे की पूरक थीं और ये पूरी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी।
0: सांसद वेरोनिक ले गोविंद को इस बुधवार एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट आत्सू के सामने पेश होना है। ये कार्रवाई रूनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलोग्राम गांजा की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा कल संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वेरोनिक ले गोविंद 2 अगस्त को अपनी इच्छा से आत्सू पहुंची थी। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें इस बुधवार को अपने वकील के साथ दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा। इस मामले में उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाजी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के एसयूवी वाहन को भी पुलिस ने जब्त करके उसकी जांच की। जांच के दौरान उसमें गांजा का एक बीज और गांजे के कुछ निशान मिलने की बात कही गई है। पुलिस जांच के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन भी दंपत्ति की संपत्तियों की जांच कर रही है। और विदेशी खबरों में तेल की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले 3 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह ये रही कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ एक समझौता हो सकता है, जिससे रणनीतिक महत्व वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग को फिर से जहाजरानी के लिए खोला जा सकेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा है कि बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो इस सप्ताह से ही तेल की खेपों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकती है। यूरोपीय संघ ने क्रेटा में प्रवासी संकट से निपटने के लिए स्पेन की तेज कार्रवाई की सराहना की है। मंगलवार को यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की बैठक के बाद स्पेन के गृह मंत्री ने बताया कि 30 और 31 जुलाई के बीच लगभग 72,000 प्रवासी उत्तरी अफ्रीका स्थित स्पेन के क्षेत्र क्रेटा में प्रवेश कर गए थे। उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 70,000 लोगों को बाद में मोरक्को वापस भेज दिया गया। सीमा के स्पेन वाले हिस्से में कम से कम 75 लोगों की मौत हुई है, जबकि मोरक्को में 11 लोगों की मौत की खबर है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। मस्करेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। पूर्व की ओर से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज दिन से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होने लगेगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों

इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 6:37 पर सूरज निकला है और शाम 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।

बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया वेग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई गई है। सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया है। 23 बिलियन रुपए से ज्यादा का ऋण दो चरणों में मिलेगा। और विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। डॉक्टर के जानकी रोड लिस्पेरेंस पीतू में 79 साल के 79 ईयर ओल्ड के श्री विष्णुदेव रामकरण, जो कॉमिक साडा से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह बाद के 3 बजे उनकी पत्नी प्रेमपति रामकरण के घर डॉक्टर के जानकी रोड लिस्पेरेंस पीतू से उठाकर पीतू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। आलेजाक स्ट्रीट नुवेल फ्रांस में 64 साल की 64 ईयर ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मीन किडू, पैदाइश नाम गमंडी, और जो मैडम राविन से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति रविन किडू के घर आलेजाक स्ट्रीट नुवेल फ्रांस से उठाकर नुवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM। डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमान सेंट आंद्रे में 77 साल के 77 ईयर ओल्ड के श्री यशदेव बरोसी, जो विजय से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमान सेंट आंद्रे से उठाकर मोसलमान सेंट आंद्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। सोलफेरिनो नंबर 3 वाकवा में 71 साल की 71 ईयर ओल्ड की श्रीमती उर्मिला एतवा, पैदाश नाम दुडम, और जो माला से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके घर सुलफेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर सुलफेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11:30 AM। नंबर 47 कनाल बातिस्ट सेंट क्वा में 77 साल के 77 ईयर ओल्ड की श्री सत्यदेव भैरू, जो देव से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर नंबर 47 कनाल बातिस्ट सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। रेलवे रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 36 साल की 36 ईयर ओल्ड की श्रीमती प्रतिमा रामखेलावन, पैदाइश नाम राजकुमार, और जो प्रीति से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:00 बजे उनकी मां वनिता गोकुल के घर रेलवे रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM। पिचपाके रोड मोताई ब्लांश में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड के श्री दयानंद कतुना, जो अनिल से ज़्यादा जाने जाते

0: तिथि की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अशरफ कटुना के घर पिचिपा के गोद मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। रुई मोरिस मेबर्ग में 58 साल के 58-year-old के श्री देवेन पायन जो जेसन से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी गंद्रावती पायन के घर रुई मोरिस मेबर्ग से उठाकर टोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

6:53 हो चुके हैं। चलते चलते एक छोटी सी याद दिला दूं, मौसम बदल रहा है इसलिए अम्ब्रेला साथ रखिएगा, आरामदायक कपड़े पहन के जाइएगा, शूज़ पहन सकते हैं तो शूज़ पहनिएगा, मुस्कुराती रहिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, और ये सुबह आपका सफ़र अच्छा हो, अच्छा दिन जाए आपका। अब आपको साथ मिलने वाला है वेदिता का मॉर्निंग बिट पे, इंजॉय कीजिएगा। पर मेरी तरफ से बाय बाय।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: करते करते हम भी आ गए. गाने में ही था ना, आइए आ ही जाइए, तो बस आ गए. गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक. देख लो, अगस्त महीने में 5 दिन भी निकल गए. सुबह के 7:06 हुए हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. मैं हूँ आपके दोस्त वेदिता, साथ देने आई हूँ अभी से लेके 9 बजे तक. हमसे पहले पूनम थी, अभी डांस करी थी, ऐसे करके एंट्री की हमने. बाहर का मौसम बहुत ही लवली है, अभी अभी सनराइज हो रहा है. आप लोगों को भी अगर मौका मिले एंजॉय करने का तो कर लीजिए. चलिए, विजिता का साथ है और हम साथ रहेंगे आपके डेडिकेशन, आपके मैसेज और गेम के साथ.
3: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशो देखे सकबा. अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए. आप तोहर अपिकाशो कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा. सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जोन सच्चाई में मायना रखेला. जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा. सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
4: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट.
5: Aujourd'hui, c'est jour du loto et du loto plus. Le jackpot du loto est estimé à 8 millions d'euros.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एनस्ता नोचे बेटा सुबह सुबह क्या नोच रहा है चल कोई नहीं हम लोग गिफ्ट लाए हैं ऐसा कर गिफ्ट के लिए थोड़ा खेलना शुरू कर तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम खेल रहे हैं आपके साथ और विनर्स की तरफ से आपके लिए 500 रुपीस का एक वाउचर ले आए हैं अगर आपको ये वाउचर चाहिए तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू मेरे सवालों का आज तारीख कौन सी है आज तारीख है 5 तो चलिए 5 अगस्त के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सवाल ओके तो आपको मुझे बताना है अंटिल 6th of August Until 6th of August, what is the normal price and a promotional price of Raj Mahal XXL Basmati Rice 5 kg? Until 6th of August, what is the normal price and the promotional price Raj Mahal XXL Basmati Rice 5 kg? सही जवाब आपको देना है on 549 and 1294 याद रखिए आपको मुझे सही जवाब देना है 549 and 1294 पर और अपने पूरे नाम और पते के साथ

0: क्या कहते हैं, उर्मिला मटुंडकर है, वो तो बाहर आ गई और आपने भी ट्राई किया होगा, है ना?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: मैं तो कहती हूँ सिर्फ इनाम जीतने में ही खुशी नहीं होती, गाने पे डांस करना भी कभी भी बहुत मजा आता है। आई गेस आप लोग वही कर रहे होते। एंड आपके लिए हमारा सवाल, आपको मुझे जवाब देना है, अंटिल 6th ऑफ अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ राजमहल XXL बासमती राइस 5 kg। नॉर्मल प्राइस मैं जवाब देती हूँ, नॉर्मल प्राइस है ₹359 एंड प्रमोशनल प्राइस है ₹299.95। और यहाँ पर विनर बने हैं कौन, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर कुटेज से याशना ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच याशना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसी के चलते आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से MBC के साथ खेलने पर ₹500 का एक गिफ्ट वाउचर जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके चलो, हाँ इशारा करें पोस्ट, हाँ बिल्कुल पोस्ट कर दिया जाएगा। और हमें बस इशारा हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो थोड़ी देर में आपको कॉल करेंगी सारी डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और बाकी हमारी जितने भी लिसनर्स हैं, भूलिएगा नहीं कि बाद में भी हमारे प्रोग्राम में गेम्स आएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप लोग एंजॉय करें हमारे खूबसूरत गाने, डांस करना है तो क्यों नहीं, शुरुआत थोड़ा स्लो करें।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: भाई जिगरे जिगरे भी पता नहीं कितने सारे लोग जिगे भी होंगे, क्योंकि ये स्टेप तो बड़ा मुश्किल है भाई। जिसने सीखा नहीं सीखा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं और रेडियो मस्ती पर अब समय हो गया है कि हम चलिए उधर जहाँ पर हमारे जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनको कॉल करें और ट्रिंग ट्रिंग करते हुए उनको हैप्पी बर्थडे विश करें। तो चलिए, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और आप

आते हैं कि हम उन्हें फोन करके उनको विश करें. डोंट फॉरगेट हमारा नंबर है 5491294. उनका नाम और उनका फोन नंबर जल्दी से हमें भेजें ताकि लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हम उनको विश कर सके हैप्पी बर्थडे.

0: गाइस जब हम सरप्राइज के लिए आपसे फोन मांगते हैं तो आपका नहीं बल्कि उनका फोन नंबर आपको मुझे देना है जिनका आज बर्थडे है, यानी कि अगर आपके भाई का बर्थडे है तो उनका फोन नंबर आपको हम तक पहुंचाना होता है, मम्मी का फोन नंबर देना होता है, आपका कोई फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहा अपना बर्थडे, अगर आप उनको सरप्राइज करना चाहते हैं तो मुझे उनका फोन नंबर और नाम भेजिए ऑन 5491294।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: मुझे भी मॉर्निंग में ना कभी बड़ी जोर से हिट करती है, आप लोग समझते नहीं हो। मैंने कहा था जिनका बर्थडे है उनका नाम और फोन नंबर हम तक पहुंचाना है। आपने लिख दिया आज मम्मी का बर्थडे है, लेकिन मम्मी का तो आपने बिल्कुल डिटेल दिया ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहा है। होप कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पर करते हैं लकी ड्रॉ और यहाँ पर आपका ही एक्चुअली नंबर आया है। तो मीरा कंदन का आज बर्थडे है, लालमाटी रहते हैं, उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अफसोस आपने मम्मी का कोई भी डिटेल हमें नहीं दिया।

0: रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए यहाँ पर मीरा कंदन को हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एंड अगर आप हमें सुन रहे हैं, आई गेस आप सुन ही रहे हैं, तो हम तो चाहते थे कि आपको हम मॉर्निंग में खुद कॉल करके विश करें। अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी ने हमें आपका नंबर नहीं दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कब से कि उनसे हम कंटेक्ट कर पाए, क्योंकि उनका नाम आया है लकी ड्रॉ में एंड वी हैव टू बी फेयर। तो बाकी जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने बस विश किया कि हैप्पी बर्थडे इनको, हैप्पी बर्थडे उनको, लेकिन कम से कम उनका जो नाम है, आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू माय मॉम, भाई आप मम्मी का नाम भेज दो, आप उनका फ़ोन नंबर भेज दो। हमारा बहुत ही सिंपल होता है, आपको जिनका बर्थडे उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर भेजना होता है। तो चलिए यहाँ पर कम से कम आपने अपना पूरा नाम और ये भी बताया कि वो कहाँ से हैं। अगर मीरा जी हमें सुन रही हैं तो डेफिनेटली हम थोड़ी देर में पूनम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको थैंक यू सो मच। यहाँ लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर जो आपको आके कलेक्ट करना है, आज नहीं तो कल, एट दी एंड MBC अपने ID कार्ड के साथ।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: अरे समय हो गया है अब अरविंद से मिलने का. चलिए जानते हैं लेटेस्ट खबरें हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड से. वो लेकर आए हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग आर्म टू लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने गए हमारे एथलीट, खिलाड़ी और डेलीगेशन के बाकी लोग कल वापस आए. एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और खबर है कि आज गोल्ड मेडल जीतने वाला 28 साल बाद मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीतकर रेमी फेये आज मॉरिशस लौट रहा है. उसके लिए भी शानदार स्वागत का प्रबंध किया गया है. यूईएफए चैंपियंस लीग थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में कल कई मैच खेले गए. अरारत आर्मेनिया ने 2-1 से सेल्ये को हराया. जाल्बी 1 स्लोवान 2, शेवा 1 रेड स्टार 0, लेवस्की 1 कैरात 0. Dinamo Zagreb ne 5-0 se Kono Žalgiris ko hraja. Olympiakos 0 NEC 0, Sparta Prag 2 Lyon 1, Union Saint-Gilloise 3 Bodø Glimt 3. Europa League me Larnes 0 Iberia 0, Shamrock 3 Ignacia 1. Conference League me bhi ek match khela gaya. Oda team ne Dinamo ko 1-0 se hraja. फ्रेंडली मैचों में बायर्न म्यूनिख की जीत 2-1 से जेजू टीम के खिलाफ. फिर एस्टन विला ने भी अपना मैच जीता. आज के फ्रेंडली मैचों में एसी मिलान का मुकाबला इंटर मिलान यानी मिलानो का मिलन. चेल्सी खेलेगा यूवेंटुस के खिलाफ हांगकांग में. फिर मालोका पेरिस सेंट जर्मेन, आर्सेनल बेटिस. मोहम्मद सलाह और तुर्की की टीम त्रबज़ोंस्पोर के बीच बातचीत हो रही है. निगोसिएशंस ऑन. आज सलाह इस्तांबुल जा रहा है. फीफा के सीनियर लीडर आज मोरक्को में मिल रहे हैं. प्रेसिडेंट इन्फांटिनो ने सबको बुलाया है एक अर्जेंट मीटिंग के लिए. इन्फांटिनो के कमर्शियल प्लान पर काफी आलोचनाएं, क्रिटिक्स बरस रही हैं. फीफा के चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट आर्सेन वेंगर, सेक्रेटरी जनरल मैथियास ग्राफस्ट्रॉम, प्रिंस आली सब के सब इन्फांटिनो से सहमत नहीं है. बढ़ते तनाव और क्रिटिसिज्म के मद्देनजर इन्फांटिनो ने क्राइसिस मीटिंग बुलाई है. साइकिलिंग टूर डे फ्रांस डम में कल टाइम ट्रायल स्टेज लगा. अब स्विट्जरलैंड की मारलेन रूस सब नया लीडर बनी है.

0: मॉरिशस की किम लेकू अपियना अब 15वें स्थान पर है, आज पांचवा स्टेज होगा। और राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुए, मॉरिशस की तरह कई देशों में एथलीटों और खिलाड़ियों का धूमधाम से स्वागत किया गया, पर ऐसे बहुत एथलीट हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद कई विदेशी एथलीट भाग गए, उगांडा से 4 बॉक्सर लापता हैं, पाकिस्तान का एक बॉक्सर भी वापस नहीं जाना चाहता, पर हमारे एथलीट वापस आ रहे हैं, मॉरिशस को पसंद करते हैं और मॉरिशस को उन पर गर्व है, उनका शानदार धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। ब्रावो कहेंगे हमारे उन सभी एथलीटों को जिन्होंने ग्लासगो 2026 में मॉरिशस का नाम रोशन किया और उन पर गर्व है। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविन।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds pas 295

0: 2. Radio Musti. Moments that matter with Seacom. जीवन के सबसे खूबसूरत पल स्क्रीन के आगे नहीं, बल्कि उस सब जना संगे जियल जाला जिकरा हमने खुशी रहिला जा। यही खातिर सिकोम लगे जिंदगी के आसान बनाए खातिर डिजिटल माध्यम अपनाई ले है जा, जिकर से आप सब औसन पल जस्ती बिताई जोन तोहर खातिर जस्ती मायना रखेला। एगो कुताशो खोजा था वह बस कुछ क्लिक में तैयार हो जाए, अपन प्रीमियम के पैसा चुकाए खोजा था वह ये आसान बा। आप सब हमने के ऑनलाइन पेमेंट के सुविधा से हाली से आर बिना डरे एकदम सुरक्षित तरीका से ऊ चुकाए। अपन पॉलिसी देखे के हो या अपन अप्रिकाशों कहाँ पहुँचल बाटे ये जाने खोजा था वह, आप ये सब कहूँ से कबो भी अपन सुविधा के अनुसार करे सकब। सिकोम के डिजिटल सेवा के एक के गो मकसद है तोहर पूरा अनुभव आसान सीधा और बिना कोनो झंझट के बनाए के, काहे की सबसे नीमन टेक्नोलॉजी उहे है जो तोहर जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा आनंद ले के समय दे जो सच्चाई में मायना रखेला। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला। It was moments that matter with Seacom.
1: Entre les mamans, on fait quoi? Et l'énergie à revendre? On a tous besoin d'une pause. Heureusement, McDonald's s'occupe de tout pour nous faciliter la vie. Pour les enfants, c'est la magie du Happy Meal. Espace de jeu, face painting et des animations gratuites. Retrouvez le programme complet des animations sur la page Facebook de McDonald's Maurice. McDonald's, les vacances se savourent ensemble. McDonald's, pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
0: RM2. Radio Musti.

चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ अब हम बढ़ते हैं 8 बजे के समाचारों की ओर। फिर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, याद रखिए अब यही है आपके साथ, गेम्स भी होंगे, हम वेदर रिपोर्ट के साथ भी आ रहे हैं, आपकी कुछ इधर उधर की बातें होंगी और 5491 2942 पे आपके डेडिकेशंस, व्हाई नॉट।

भोजपुरी में समाचार सुना जा। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने खातिर त्याग और बलिदान की जरूरत बा। इस संदेश प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल सांझ के दिलन पोग्रान रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा के 80वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में बोला थ्रालन। प्रधानमंत्री सबसे पहले मॉरिशस में भाषा के संरक्षण में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के महत्वपूर्ण भूमिका के सराहना करलन। एकर संगे संगे उ राष्ट्रीय एकता और सहयोग के मांग भी करलन। उ बोलन कि देश के अर्थव्यवस्था के बचाए खातिर सरकार कठिन फैसला लेवता। उ ई भी स्पष्ट करलन कि सब मॉरिशस वासी लोग के भागीदारी और सहयोग के बिना ई लक्ष्य हासिल करे के संभव नहीं रही। अफ्रीकी विकास बैंक के कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जून 28 जुलाई के प्रकाशित होल मॉरिशस के सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के लेके चिंता जताई बा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार जून के शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन रुपया के से जस्ती के बजट सपोर्ट लोन के मांग कर लेबा। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दुगो किस्त में जारी करल जाए जिन वित्तीय बरिस 2026-2027 और 2027-2028 के दौरान मिली। कल सांझ के लाप्रेरी में एगो हाइड्रोप्लेन हादसा में 25 बरिस के पोलैंड के एगो पर्यटक के मौत हो गल। बोबासा के रहे होला पायलट के पुलिस के पहुंचला से पहले ही हाइड्रोप्लेन के संचालन करे होला कंपनी के कर्मचारी लोग बचा लेलन सा। गंभीर रूप से घायल पायलट के इलाज खातिर एगो निजी क्लिनिक में भर्ती करल गल बा। ओकर कंधा और रीढ़ के हड्डी ढेर जगह टूट गल बा। बजट 2025-2026 में घोषित वीएटी के पंजीकरण के सीमा के 6 मिलियन रुपया से घटा के 3 मिलियन रुपया करला के बाद एमआरए 655 मिलियन रुपया के आय कमाई लेबा। ये आंकड़ा पहला अक्टूबर 2025 से 29 जुलाई 2026 के अवधि खातिर रहा। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम राष्ट्रीय सभा में कल पीएमक्यूटी के दौरान दिलन। उ लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक के प्रश्न के जवाब देवत हलन। ये अवधि में 8,764 गो नवा कंपनी वीएटी खातिर पंजीकरण करलन सा जबकि खाली 84 कंपनी के पंजीकरण रद्द कर देवल गल बा। सरकार के अनुसार ये कदम के उद्देश्य व्यापारिक संस्था के बीच जस्ती निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करे के है और अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसाय के औपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्सा बनाए खातिर प्रोत्साहित करे के है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों इस बैस्तर के 21 बरिस के कठोर कारावास के सजा सुनावल गलबा। उनकर सहयोगी एंटनी स्टीव साम

0: के भी 21 बरिस के सजाते वलकल बा डुनो के मदागास्कर से अनलगल लकड़ी के मूर्ति में 2 किलोग्राम से जस्ती हेरोइन के तस्करी के दोषी पाल गल बा। ये फैसला 4 अगस्त के असाजेज अदालत बगल से सुनावल गल। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के आज आजसू के सामने पेश हुई के परी ये कार्रवाई रेन्यून आर्मोरिशस के बीच 155.7 किलोग्राम गांजा के तस्करी के जांच के सिलसिला में करल जाता। प्रधानमंत्री काल संसद में देवलगल जानकारी के अनुसार वेरोनिक ले गोविंद 2 अगस्त के अपन इच्छा से आजसू पहुँचलन, पर अधिकारी लोग उनकरा आज अपन वकील के संगे फिर से आए के बोलन सा। ई मामला में उनकर पति गुलशन गोविंद और रविंद्रा चिमाजी के पहले ही गिरफ्तार करल गल बा। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के SUV वाहन के पुलिस जब्त कर ले बा और जांच कर ले बा। जांच के दौरान उकर में गांजा के बिया और गांजा के निशान मिलल बा। पुलिस जांच के संगे संगे FCC भी दंपति के संपत्ति के जांच कराता। और दूसर देश के खबर में तेल के कीमत के में मंगलवार के गिरावट दर्ज करल गल और ई गल 3 सप्ताह के सबसे कमती स्तर पर पहुँच गल बा। एकर वजह यह कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी लोग के उम्मीद बा कि ईरान के संगे एगो समझौता हो सकी जेकर से रणनीतिक महत्व होला स्टेट ऑफ होमयूस समुद्री मार्ग के फिर से खोले सकल जाए। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबको के नमस्ते।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: अरे वाह क्या बात है, किशोर खिमिया आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: आप लोगों का अगर मूड बन गया होगा ड्राइव करते करते, तो चलिए हम इसी मूड को बरकरार रखेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सुबह के 8:11 हुए हैं, आज है 5th of August। लाइक आई सेड कि देखो अभी अभी अगस्त का महीना शुरू हुआ और 5 दिन ऐसे निकल गए, तो ऐसा करते हैं कि हम हर एक पल को खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करते हैं आपके साथ। भूलिएगा नहीं कि जब आप किसी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं तो उनको एक स्माइल ज़रूर सर्व कीजिएगा, क्योंकि यही होगा जो उनको पूरा दिन हैप्पी रखने वाला है। चलिए आज का दिन कैसा रहेगा ये जानने के लिए मिलते हैं ना गीता जी से।
3: मस्करेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं और पूर्व से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज दिन से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और दोपहर बाद को भी पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को बादल घिराएंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:37 पर और शाम 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: टाइम कि आपके लिए हम लेकर आए गेम. अगर आप मुझे सही जवाब देते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इनाम. यस, द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड. और एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ खेलने पर आपको क्या मिल रहा है मैं बताऊं आपको. आपको मिलेगा चांस टू विन फॉर एंट्री टिकट्स एंड वन फुट कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. एंड मैं आपको बताऊं ये शुरू हो रहा है 12 अगस्त को, ये चलेगा 16 अगस्त तक एट SBICCPI सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक. बस शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन यही होने वाला है. तो इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, साथ में लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर और कानमा का भी शो होने वाला है. साथ में ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स

लिमिटेड। तो चलिए यहाँ पर आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं आपसे एक बहुत ही आसान सवाल पूछ रही हूँ, एक रिडल है एक्चुअली। मैं पानी से पैदा होता हूँ लेकिन पानी में जाऊँ तो मर जाता हूँ। मैं पानी से पैदा होता हूँ लेकिन पानी में जाऊँ तो मर जाता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है। ऑन 5491294।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलो जी 27 और वेदिता के साथ आप लोग जुड़े हैं रेडियो मस्ती पर। यहाँ पर हमारा सवाल था आपके लिए, हम खेल रहे हैं इधर आपके साथ, लेकर आए हैं एक सवाल यानी कि एक रिडल हमने आपसे पूछा था। आपको बताना था कि मैं क्या हूँ, मैं पानी से पैदा होता हूँ लेकिन पानी में जाते ही मैं मर जाता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने सवाल ही इतना आसान पूछा कि आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो फिर आप मुझे बोलते नमक या तो फिर आप मुझे बोलते बर्फ। तो यहाँ पर दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। किसी ने मुझे मच्छर भी बोला था, तो मच्छर पानी से हाँ बिल्कुल, लेकिन ठीक है आपने बताया, लेकिन वो पानी में कैसे ख़त्म हो जाता है? अच्छा, स्विमिंग करने जाता है, डूब जाता है, मर जाता है, यही आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने रिडल पूछा था। चलो देखते हैं कि कौन है जो जीत गया यहाँ पे। यस, तो यहाँ पर हमारे विनर हैं सुभाष बडोसी, और आपको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, यू आर फ्रॉम एनएस फ्लो। हाँ, तो जितने भी लोग हमें वहाँ पे सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपको मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको 4 एंट्री टिकट्स, यानी कि 4 लोग आपके साथ जा सकते हैं, या तो फिर आप 4 दिन लगातार जा सकते हैं। साथ में आपको मिल रहा है 1 फुट कूपन फॉर

0: में यहाँ पर कानवा का होगा शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। चलिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपको एमबीसी और राजस्थान वर्क्स की तरफ से मिल रहा है ये इनाम, और ये इनाम आपको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा एट एमबीसी अपने आईडी कार्ड के साथ। भूलिएगा नहीं, सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ।
1: RM2 Radio Musti 10 roupies, 50 roupies, 100 roupies, 200 roupies. Oui, ouvine bien tendé. La Foire Fouille présente tous ce Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park. Ban milliers lotiques à prix foufou. Cosmétiques, meubles, textiles et plus encore, et n'indice tout. Parata l'occasion là. Pour famille, voisins, camarades, vinfen les tout. Nous pouvons attendre. La Foire Fouille Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park.
2: La fête à la maison, la foire fouille. RM2
3: Radio Musti.

0: और जितने भी हमारे दोस्तों ने मिस कर दिया था 7:30 बजे का स्पोर्ट्स, अरविंद से फिर मिलें।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं, जानते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आर्म टू लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने गए हमारे एथलीट, खिलाड़ी और डेलीगेशन के बाकी लोग कल वापस आए। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और खबर है कि आज गोल्ड मेडल जीतने वाला 28 साल बाद मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीतकर रेमी फेये आज मॉरिशस लौट रहा है, उसके लिए भी शानदार स्वागत का प्रबंध किया गया है। UEFA चैंपियंस लीग थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में कल कई मैच खेले गए। अरारत आर्मेनिया ने 2-1 से सेल्ये को हराया। जाल्बी 1 स्लोवान 2, शेवा 1 रेड स्टार 0, लेव्स्की 1 कैरात 0, दिनामो ज़ाग्रेब ने 5-0 से कोनो ज़ाल्गिरिस को हराया। ओलंपियाकोस 0 NEC 0, स्पार्टा प्राग 2 लियों

0: et Union Saint-Gilloise Teen Bodoglint Teen. Europa League met Larnez 0, Iberia 0, Shamrock Teen, Ignacia Eek. Conference League met Eek Match Klager, Oda Team met Dinamoko Eek 0 Sihraya. Friendly match met Bayern Munich qui dit 2 Eek se Jeju Team ke khilaf. Phir Aston Villa ne bhi apna match jita. Aaj ke friendly matchon mein AC Milan ka mukabla Inter Milan yani Milano ka Milan. Chelsea khelega Juventus ke khilaf Hong Kong mein. Phir Maloka Paris Saint-Germain Arsenal Betis. Mohamed Salah aur Turkey ki team Trabzonspor ke beech baatcheet ho rahi hai. Negotiations on. Aaj Salah Istanbul ja raha hai. FIFA ke senior leader aaj Morocco mein mil rahe hain. President Infantino ne sabko bulaya hai ek urgent meeting ke liye. Infantino ke commercial plan par kafi aalochnaye critiques baras rahi hain. FIFA ke chief of global football development Arsene Wenger, secretary general Matthias Grabstrom, Prince Ali sab ke sab Infantino se sehmat nahi hain. बढ़ते तनाव और क्रिटिसिज्म के मद्देनजर इन्फांटिनो ने क्राइसिस मीटिंग बुलाई है। साइकिलिंग टूर डे फ्रांस दम में कल टाइम ट्रायल स्टेज लगा। अब स्विट्जरलैंड की मारलेन रूसब नया लीडर बनी है। मॉरिशस की किम लेकूर पियना अब 15वें स्थान पर है। आज पांचवा स्टेज होगा और राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुए। मॉरिशस की तरह कई देशों में एथलीटों और खिलाड़ियों का धूमधाम से स्वागत किया गया, पर ऐसे बहुत एथलीट हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद कई विदेशी एथलीट भाग गए। उगांडा से 4 बॉक्सर लापता हैं, पाकिस्तान का एक बॉक्सर भी वापस नहीं जाना चाहता, पर हमारे एथलीट वापस आ रहे हैं, मॉरिशस को पसंद करते हैं और मॉरिशस को उन पर गर्व है। उनका शानदार धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। ब्रावो कहे गए हमारे उन सभी एथलीटों को जिन्होंने ग्लासगो 2026 में मॉरिशस का नाम रोशन किया और उन पर गर्व है। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम। टेक केयर। बाय बाय।
1: मॉर्निंग बीट RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: कुछ लोग सोचते हैं जब लाइफ परफेक्ट हो जाएगी ना तब वो हैप्पी रहेंगे। एक बात बताऊं, हैप्पी रहना सीख लो, सब परफेक्ट अपने आप हो जाएगा। क्या लेके आए थे? कपड़े तक नहीं थे तन पे। और क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं। जब कुछ लेके जाना ही नहीं है तो किसके लिए अपनी खुशियों का गला घोंटते रहते हो? हर किसी को जिंदगी एंजॉय करने के लिए मिली है ना। हम जब पैदा हुए थे तो किसी और ने खिलाया, किसी और ने पिलाया, किसी और ने नहलाया, किसी ने चलना सिखाया, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने पढ़ाया, है ना। सब कुछ तो हमें दूसरों से ही मिला है। तो करना है तो कुछ काम कुछ ऐसे करो कि आपके जाने के बाद लोग जो हैं आपको याद करें। जिसने आपके लिए अच्छा किया है उनके लिए और भी अच्छा करो, है ना। इतना स्ट्रेस, इतना ईगो, इतनी नफरत, ये कंपटीशन, इतना दिखावा क्यों? इतनी महंगी गाड़ी खरीदेंगे, इतना बड़ा घर खरीदेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम अपनी खुशियों का गला घोंट देंगे, लेकिन ये हमें करना है। क्यों करते हो? लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होता है ना। एक अच्छा सा गाना सुन लिया, दोस्त के साथ बातें कर ली, एक अच्छा सा म्यूजिक पे डांस कर लिया, खुश नहीं हुए? हुए ना। तो खुशियाँ ऐसी होती हैं, छोटी छोटी, जो महसूस की जाती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घर से नहीं आती खुशियाँ। सोचना इसके बारे में।
1: Orange Tube. Radio Musti. Feel the Musti.

0: One more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
3: वो नहीं आने वाली,
4: आने वाली, आने वाली।
3: वो बेवफा छलावटी, छलावटी, छलावटी।

0: देखे भाई हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, इनको तो बस उल्टे पैरों वाले ही चाहिए। सुबह 7 बजे से हूँ, गुड मॉर्निंग तो भेज दो। 5491294 नंबर तो आपको पता ही है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं, बी केयरफुल ड्राइव कर रहे हो, आराम से ऑफिस पहुंच गए। जो लोग पहुंच गए ठीक है, कुछ लोग ऑफिस जल्दी पहुंचना पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि हम ऑफिस जल्दी चले जाते हैं फिर उसके बाद बैठकर अपने मोबाइल पे हम आपको सुनते भी हैं और साथ में हम अपना ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ऑलराइट, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना, मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम कुछ बादाम, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखा करो, मॉर्निंग में फ्रूट खाना बहुत अच्छा होता है।

यू नो, और अभी जैसे सर्दी का मौसम है ना, तो विटामिन सी यानी कि कुछ ओरेंजेस अगर हो तो खा लिया करो प्लीज, मुझ पे मेहरबान नहीं कर सकते, मेरे बॉडी पे तो मेहरबानी हो ही सकती है ना, तो अपना ख्याल रखना। चलिए इसी के साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको लगता है मॉर्निंग आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आप क्या कर सकते हो। देखो हमारे पास कमाल के गाने होते हैं, आप गाने सुनो और फिर उसके बाद हमारे गानों पर डांस करो।

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: चलो जी, अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच. अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाती चलिए. एक स्माइल तो बनता है यार, एक स्माइल मांग रही हूँ. इतना सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं खुश करूँ और

0: भी एक स्माइल मांग रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं मांगा मैंने, है ना। चलिए टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, अब आपसे मुलाकात करूंगी मैं कल मॉर्निंग 7 बजे, फिर आऊंगी। कहाँ बचके जाओगे बच्चे, मैं तो फिर आऊंगी कल। चलो ऐसे ही मूड के साथ, ऐसे ही गाने के साथ और ऐसे ही गिफ्ट के साथ, तो कल फिर मिलते हैं। अभी के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
1: Morning beat, a good beat for your morning show. James,
2: RM2, Radio Musti in the mix.
0: और चलिए इसी के साथ हम सुहाना को विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे उनके नाना नानी की तरफ से, उनके दादी की तरफ से और उनके सिस्टर जू की तरफ से, बहुत बहुत सारा प्यार। एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस इज यश, कवि, अंकुशा एंड साथ में है निवृत्ति, विजेशना एंड पुष्कल की तरफ से, कोको की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, सुबह के 9 बजे हैं.
5: हमारा नमस्कार. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी. ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया. वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग की मांग की. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा. अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है. रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन मॉरिशन रुपए से ज्यादा के बजट सपोर्ट लोन की मांग की है. ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी. कल दोपहर बाद लापरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई. वहीं बोबासन के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया. गंभीर रूप से घायल पायलट के को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों इस बेस्तर को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. उनके सहयोगी एंटोनी स्टीव साम को भी 21 साल की सजा दी गई है. दोनों को मारागास्कर से लाई गई लकड़ी की मूर्तियों में छिपाकर 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी का दोषी पाया गया. ये फैसला 4 अगस्त को असाइसिस अदालत द्वारा सुनाया गया. सांसद वेरोनिक लेगोविन को इस बुधवार एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट के सामने पेश होना है. ये कार्रवाई रूनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलोग्राम गांजे की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की जा रही है. प्रधानमंत्री द्वारा कल संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वेरोनिक लेगोविन 2 अगस्त को अपनी इच्छा से आजसू पहुंची थी. हालांकि अधिकारियों ने उन्हें इस बुधवार अपने वकील के साथ दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा. इस मामले में उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाची को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. और विदेश खबरों में तेल की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले 3 सप्ताहों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. इसकी वजह ये रही कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ एक समझौता हो सकता है जिससे रणनीतिक महत्व वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समुद्री मार्ग को फिर से खोला जा सकता है. इसके साथ है संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
6: Welcome to RM2.
0: Musti Morning.

जब भी कोई हसीना देखो, गुड मॉर्निंग, 9:09 हुए हैं, ऐसे मौसम में ऐसे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चुनकर लाए हैं आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हाजिर हुए मनीष माझा सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, यानी कि 3 घंटों का ये जो सफ़र है बस शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपकी डेडिकेशन, ऊपर से इस बरसाती मौसम में थोड़े से 2000 के गाने आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गेट यू सम बेस्ट ऑफ द सॉन्ग सिलेक्शंस, बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट गोज आउट टू ऑल दोस जो कि अभी तक ट्रैफिक में फंसे हैं, खाए ना, लेकिन थोड़ी सी देरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, जिंदगी चलती रहती है, मुस्कुरा दो और एंजॉय करो हमारे साथ ऑन आरएम2 रेडियो।

0: हमेशा अगर आप अपने आप से प्यार करते हो किसी के प्यार पर निर्भर भी नहीं कर पाओगे जी हाँ डोंट डिपेंड ऑन अदर पीपल टू वैलिडेट योरसेल्फ यू नो योर वर्थ यू नो हाउ ब्यूटीफुल यू आर यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर बस आप खुश रहो और हमेशा यूं ही साथ निभाते रहिएगा यहाँ पर रागेट है द प्यार दिलों का मेला है कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए आपके मौसम को और भी मस्त बनाने के लिए ओके जी आगे सो मेनी मैसेजेस यहाँ पर कह रहे कि बारिश बारिश बारिश हल्की बारिश कहीं पर भारी बारिश क्या बात है तो आप एंजॉय कीजिएगा अपने हॉट हॉट कॉफ़ी के साथ वैसे इट्स मॉर्निंग टाइम 9:26 हुए हैं हैव योर कॉफ़ी हैव योर चाय हैव योर मस्त ब्रेकफास्ट ओके
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: करके 30 मिनट हुए हैं जुड़े हमारे साथ नारिम टू रेडियो मस्ती. ऑफ कोर्स आई गेट हियर योर होरोस्कोप. तो शुरुआत करते हैं विद एरीज.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज आपकी एनर्जी से आज आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे. जो काम काफी टाइम से पेंडिंग था उसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकते हैं आपको. फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. अपने वर्ड्स का यूज कीजिएगा वाइजली. ओके जी. सो बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल यू आर चूजिंग योर वर्ड्स. और लकी नंबर नंबर 1 एंड लकी कलर रेड.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज प्रैक्टिकल अप्रोच आपको हर सिचुएशन में एडवांटेज देगा. पैसों से जुड़े फैसले सोच समझ कर लीजिएगा. किसी अपने से मिलकर दिल खुश हो जाएगा. हेल्थ को इग्नोर ना करें. लकी नंबर 4 लकी कलर ग्रीन.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन दोनों ही आपके फेवर में रहेंगे. करियर में नए आइडियाज अप्रिसिएशन देगा आपको. और स्टूडेंट्स के लिए फोकस बनाए रखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जी. लकी नंबर नंबर 5 लकी कलर येलो.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आपको सपोर्ट हर कदम पर मिल सकता है. इमोशनल डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिएगा. सोच समझ के निर्णय लीजिएगा. इवनिंग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद रहेगा. लकी नंबर नंबर 2 लकी कलर व्हाइट.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपकी पर्सनालिटी आप सबके लिए it will be positive for everybody. Leadership skills की वजह से ऑफिस में appreciation मिल सकते हैं आपको. कॉन्फिडेंस बनाए रखिए लेकिन पेशेंस भी साथ रखिए. ओके जी. यहाँ पर लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 लकी कलर गोल्डन.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज प्लानिंग और डिसिप्लिन आपको सक्सेस के करीब ले जाएगा. छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी. और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताइएगा. लकी नंबर 6 लकी कलर लाइट ग्रीन.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: रिलेशनशिप्स में स्वीटनेस बनी रहेगी. आज किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है और आपको अच्छा फील भी महसूस होगा. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी आज दिन फेवरेबल है. लकी नंबर नंबर 8 एंड लकी कलर पिंक.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज डिटर्मिनेशन ही आपकी पहचान होगी. ऑफिस या बिजनेस में आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड भी मिल सकता है. पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें. सो लकी नंबर नंबर 3 लकी कलर मरून.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: नए एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के लिए दिन परफेक्ट है. ट्रैवल के योग भी बन सकते हैं. अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में उसे इस्तेमाल कीजिएगा और अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कीजिए. लकी

0: नंबर नंबर सात नंबर सात ऑफ कोर्स नंबर सेवन लकी कलर ऑरेंज
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि
0: कंसिस्टेंसी ही आपकी स्ट्रेंथ रहेगी आज करियर में ग्रोथ के चांसेस भी बने रहेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेबिलिटी मिलेगी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा भूलिएगा मत लकी नंबर आठ लकी कलर नेवी ब्लू
1: एक्वेरियस कुंभ राशि
0: आज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको अलग पहचान दिला सकती है टीम वर्क से बड़े काम आसान हो जाएंगे आपके लिए अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर कीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ ओके यहाँ पर लकी नंबर आपके लिए कुंभ राशियों के लिए चार है लकी कलर स्काई ब्लू
1: पाइसेस मीन राशि
0: आज इंट्यूशन आपका सबसे बेस्ट गाइड रहेगा क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है खुद पर भरोसा रखें और हर मौके का पूरा फायदा उठाएं लकी नंबर दो लकी कलर पर्पल
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

आते जाते जो मिलता है आपके मैसेजेस जो आते हैं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सोनू निगम और अलका याग्निक के आवाजों के साथ आते जाते जो मिलता है। गुड मॉर्निंग, वांट टू विश अनीश मीटन वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मामा पापा भाई नाना नानी एंड करतारी फैमिली ऑफ होस्ट।

messages, your dedications, and you got 549 and 1294 पर नमस्ते मनीषमा जी, मैं विश्वानी. आज एकदम मस्त गाने चल रहे हैं. एक रोमांटिक वाला सॉन्ग मेरे पति दिवेश के लिए भी. ओके जी, अगला गाना ये वाला सॉन्ग स्पेशली फॉर योर हस्बैंड एंड योरसेल्फ. शाम डिविजन जी एंजॉइंग हॉट इलायची वाली चाय फुल वॉल्यूम के साथ. गुड मॉर्निंग कविता ही. एक तरफ ये बारिश का मौसम, दूसरी तरफ आपकी ऑसम सिलेक्शन. वाह, सोने भी सुहागा ये तो. आपने नाम नहीं बताया. कविता जी, हाँ जी, कविता जी की तरफ से ये मैसेज आया है. आप एंजॉय करते रहो, यही तो हमारी इच्छा है, विश है कि आप बस डूब ही जाओ रोमांटिक सिलेक्शंस में. ललिता जीतन एंजॉइंग द सीसाइड ऑफ लरी, एंजॉइंग माय स्कूल हॉलिडे. नेक्स्ट सॉन्ग गोज़ टू ऑल माय कलीग्स टीचर्स, सोनिया, पिंकी, प्रिया, रवि, आश्ले, सुनीता, दृष्टि, रानिया, सिलिया, ललिता एंड जीतन परिवार, लव यू एंड मिस यू ऑल सो मच गाइज़.

0: The Time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, it's 10 a.m. संक्षिप्त समाचार आपके साथ गीता जी, नमस्कार आपको।
6: नमस्कार मनीष मास, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रांड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुई, मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन रुपए से ज्यादा के बजट सपोर्ट लोन की मांग की है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी। बजट 2025-2026 में घोषित VAT के पंजीकरण की सीमा को 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए किए जाने के बाद MRA ने 655 मिलियन रुपए की आय एकत्र किया है। ये आंकड़े पहली अक्टूबर 2025 से 29 जुलाई 2026 की अवधि को दर्शाते हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में PMQT के दौरान दी। वे लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक के सवाल का जवाब दे रहे थे। और विदेशी खबरों में ब्राजील के साओ पाउलो में एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग लगने के बाद कई धमाके हुए जिससे लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। आग पर काबू पाने के लिए 30 दमकल गाड़ियां और 60 से ज्यादा दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। 150 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। SSR स्ट्रीट सैन फ्रांसवा कप मालेरो में 77 साल की 77-year-old की श्रीमती जसमती मंगर पैदाश नाम ब्रजमोहन और जो मंजू से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर SSR स्ट्रीट सैन फ्रांसवा कप मालेरो से उठाकर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 12:30 PM। टागो रोड एन एस फ्लोरों में 68 साल के 68-year-old के श्री राजनाथ भीमल जो हरी से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश भीमल के घर टागो रोड एन एस फ्लोरों से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
7: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings.
2: 10:06 हुए हैं and I get here some really nice elections आपके second hour को भी और भी मस्त और मजेदार बनाने के लिए. वैसे यहाँ पर बहुत सारे messages आए हुए हैं, हम पढ़ेंगे and मनीषमा का साथ रहेगा जी till 12 बजे. ऊपर से यहाँ पर इतने सारे लोग इस weather को भी enjoy कर रहे हैं, ऊपर से हमारी selection. वैसे selection में थोड़ी सी बदलाव, कुछ नए गाने इस second hour में मत से. Okay, सब के लिए गाने हैं, सब के entertainment के, सब के टेस्ट अनुसार. ओके जी, यहाँ पर द नेक्स्ट सॉन्ग परदेसिया फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी गोज आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी जो कि अभी काम पर है. जी हाँ, पहुंच ही गए होंगे, देरी किस बात की, पहले पहुंच ही गए ना. हैव अ गुड डे, पोकुराज गोज आउट टू यू. 10:08 होने को है.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती
1: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए आप तोहर अप्लीकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाय हा इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
2: Sikkim Group, a lifetime commitment.
3: Shopping, entertainment aur family fun ka sabse bada festival. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival. Powered by SBI ML and LIC Mauritius. 12 se 16 August, SBI CC Pi. Subah 10 baje se

0: रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12 टू 16 अगस्त SBICC भाई मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
1: RM2
2: रेडियो मस्ती

अच्छा ये तो प्रॉमिस रहा वादा रहा, 10 बजकर अभी 20 मिनट हुए हैं, इतने सारे प्यारे गाने आप सभी के नाम जो अभी बस हमें साथ दे रहे हैं। सर्दी का मौसम है, एंजॉय कर लो, बहुत को खास गुजारते हैं एवरीबॉडी जो भी काम पर है, घर पर बैठे बैठे बैठ नहीं सकते, घर पर कुछ ना कुछ रहता ही है करने को। ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे।

0: मैंने प्लीज प्ले द सॉन्ग ओके योद्धा मूवी से तो मैं हस्बैंड देव उनके नाम कर दीजिएगा अगला गाना हेलो गुड मॉर्निंग आरएम टू रेडियो मसी अब्दुल हया एंड सारा बानू टर्निंग टू आरएम टू हैविंग फन एंजॉयिंग द वेदर एंजॉयिंग योर सिलेक्शन ये तो हम चाहते हैं ना आप बस रिलैक्स होकर बस इन्हीं गानों का लुफ्ट उठाते रहिए थैंक यू डियर फॉर द वंडरफुल सॉन्ग्स यहाँ पर कौन है विश्वानी है और आरवी यहाँ पर आ गए हैं लॉट्स ऑफ लव टू यू टू हेलो जी वांट टू सरप्राइज माय डॉटर ऑन हर बर्थडे संडे अरे ये मैं विदिता को बताऊंगी संडे को है संडे को आई विल सी हु इज वर्किंग आई विल ट्रांसफर योर मैसेज माय डियर ओके यहाँ पर हाय आरजे होप यू डूइंग ग्रेट कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू जग्स फ्रॉम समवन स्पेशल थैंक यू सब अपने अपनों को याद कर रहे हैं क्या करें यही तो हम चाहते हैं अभी के लिए फैशन टिप हो जाए
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स
0: हाँ जी ठंड के मौसम में सिर्फ वार्म रहना ही नहीं लेकिन स्टाइलिश दिखना भी जरूरी है आज ट्राई कीजिए एक ब्राइट कलर कुर्ती या स्वेटर कहीं पर जाने का मन है तो डार्क जीन्स भी पहन सकते हो उसको थोड़ा सा रेलेवेंट बना सकते हो वैसे ऊपर से एक लाइट जैकेट या एक लॉन्ग श्रग ऐड कीजिएगा लुक को इंस्टेंटली कंप्लीट कर देता और अगर शक नहीं तो प्रिंटेड स्कार्फ और या तो एक सिंपल सी यू नो ओनली भी डाल सकते हो न्यूड कलर का एंड देन यू विल सी इट गोज आउट विद एवरी चूड़ीदार इन कंप्लीट ऑफ जीन्स एंड कुर्ती कंफर्टेबल बूट्स या एक क्लोज्ड शो न सिर्फ आपको वार्म करेगा अगर रखेगा बल्कि आपके विंटर आउटफिट को भी क्लासिक टच दे देगा You can find me in the club,
2: bottle full of bub, my mind got You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: RM2, Radio Musty.

0: वैसे देसाई पीयूष शिमला मिर्च मूवी से लिया गया ये गाना। सो गलती आ वैसे ही गलती नहीं होनी चाहिए, अभी सही जवाब देने की बारी है। 5499194 पर बताइएगा अगर आप हमारे साथ जीतना चाहते हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फुट कूपन फ्रॉम द जेंट्स लिटिल इंडिया शाहिद हालिया दी उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। आपको बताना है सिर्फ ये कब शुरू हो रहा है, डेट बताइएगा द राइट डेट ऑन 5499194 पर ये कब शुरू हो रहा है। और अगस्त में ही लेकिन आपको बस तिथि बतानी है ऑन 5499194 पर विद योर फुल नेम एंड एड्रेस। लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन 2 है देन प्लग वर्शन ऑफ बेशरम मूवी से ये गाना। आप सभी के नाम एंजॉय कीजिएगा एंड सेंड अस द राइट मैसेजेस। ओके जी, हैव फन।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

You're listening to RM2, a radio musty. 10 बजकर अभी 51 मिनट हुए हैं. थोड़ा सा मूड को बदल देते हैं. सबकी बनाते आए दिल गियर शिप्पी जा. Here we go. Have fun कीजिएगा. Messages, dedications, बस यू ही भेजते रहिएगा 1549 9194 पर. ओए होए क्या बात है.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
0: North, South,
1: 103.5,
0: East, West,
1: 96.4,
0: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
2: Time check, din ke 11 baje hai. संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से गीता जी के साथ नमस्कार आपको
3: नमस्कार मनीषमा सभी को हमारा नमस्कार अफ्रीकी विकास बैंक की कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 जो 28 जुलाई को प्रकाशित

0: प्रकाशित हुई मॉरिशस की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताती हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन मॉरिशन रुपए से ज्यादा के बजट सपोर्ट लोन का अनुरोध किया है। ये वित्तीय सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में जारी की जाएगी। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मॉरिशस में भाषाओं के संरक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार कठिन फैसले ले रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी मॉरिशस वासियों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग रेफरी और पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टीव गायतों एस्पेस्टो को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके सहयोगी एंटोनी स्टीव साम को भी 21 साल की सजा दी गई है। दोनों को मडागास्कर से लाई गई लकड़ी की मूर्तियों में छिपाकर 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी का दोष पाया गया। ये फैसला कल असाइजेस अदालत द्वारा सुनाया गया। और विदेश में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। कम से कम 14 लोगों की मौत हुई जबकि 22 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इस साल कीव पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों से अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टरों की अतिरिक्त आपूर्ति की अपील की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: आवरण जावरण फॉर यू जस्ट टू से वार्म वेलकम इन दिस लास्ट आवर 11:07 होने को है। जुड़े हैं आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों के साथ। ये है वॉर टू मूवी से लिया गया ये गाना स्पेशली फॉर दोज वर्किंग राइट नाउ जो अभी हमारे साथ दे रहे हैं। ऊपर से सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वाइब्स लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड डे टू यू मनीष मा, गुड डे टू एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आर एम टू रेडियो मस्ती। लेते हैं अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन दीवाना है देखो बेकरार वो यू नो कभी खुशी कभी गम वाला सॉन्ग आपके लिए।
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी की खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हो तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: चलिए ये जवानी है दीवानी मूवी से लिया गया है ये गाना सुभान अल्लाह फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लविंग द प्लेलिस्ट, थैंक यू सो मच. वैसे बों को आज गुजार टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप ऑन टर्निंग योर मैसेजेस, सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 549 and 1294 पर. ये है ये जवानी है दीवानी मूवी से लिया गया गाना सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग श्री राम के आवाज़ में, स्पेशली फॉर ऑल दोस जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हैव अ वंडरफुल डे बों को आज अगैन. एंड यहाँ पर आरवी है और हमारे साथ राजा है, हमारे साथ वीना है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच. यहाँ पर आई गेट हियर पूजा जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्किप द रेडियो, मुझे काम करना है लेकिन इतने सारे प्यारे गाने हैं मैं छोड़ नहीं पा रही. वेरी गुड, ये तो हम चाहते हैं ना, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हैव फन एंड एंजॉय दिस वन स्पेशली फॉर ऑल दोज रोमांटिक लवर्स.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: यहाँ पर इतने सारे प्यारे मैसेजेस हैं, बस देखती हूँ और हंसती हूँ. कभी कभी जोक्स भी भेज देते हो, कभी कभी यू नो सम वीडियोस आप भेज देते हो तो मैं हंस लेती हूँ. अकेले अकेले कहाँ हूँ, आपके सारे जो मैसेजेस हैं साथ में है ही. यहाँ पर क्या बात है मनीषमा जी, आज तो रेडियो फुल एंड लाउड म्यूजिक में है. डर लग रहा है कि इनवाइट एंड पुलिस ना आ जाए. अरे वाह, दिल जीत लिया आपने. ये जोक था ना. ओके, डरिएगा मत, लेकिन जितने बारी आप खुश रहेंगे ना, आप अपने सराउंडिंग को भी खुश कर दोगे. यस, इट्स वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिंग. यू कांट बिलीव दैट. जितने अच्छे वाइब, जितनी बड़ी स्माइल आपके चेहरे पर, समबडी यू आर स्माइलिंग एट, ऐसे नहीं हो सकता है वो ही कांट और शी कांट स्माइल बैक. आपने स्माइल बनाए रखें, आज नहीं तो कल स्माइल बैक हो जाएगा. ओके जी, आप बस अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए. कीप ऑन शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज टू ईच एंड एवरीबडी, क्योंकि आपके पास जितनी शक्ति है, क्यों? बिकॉज टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो. यू कैन बी ऑलवेज लिविंग अलोन. जो आपकी जो एनर्जी है दूसरों पर भी प्रभावित हो, यही तो चाहिए ना जिंदगी में. एंड कीप ऑन रिचार्जिंग योर सेल्फ ऑल्सो. ऐसा नहीं कि बांटते रहो प्यार, प्यार बांटते रहो, आपको भी प्यार की जरूरत है. एंड लव योर सेल्फ, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. आज देखो महिला लोग, आप घर पे हो, ओके, किसी ने छुट्टी ले ली, किसी ने जैसे यू नो यू हैव योर ओन प्लान्स. अगर आप घर पे अपने साथ कुछ अच्छा सा वक्त बिताना चाहते हैं तो वेरी गुड. एक तो पूजा पाठ के साथ साथ, एक तो अच्छे अच्छे गाने

चल रहे हैं ऑन रेडियो प्लस और ऑन रेडियो RM2 रेडियो रंजन और RM2 रेडियो मस्ती ऑफ कोर्स. आई एम वेरी वेरी सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, फिसल गया सब कुछ. आई होप कि कुछ गलत ना हो जाए. ओके, हैव अ रियली नाइस टाइम. ओके, आई एम गोना प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग मदहोश दिल की धड़कन. आफ्टर एक छोटा सा ब्रेक देन विल बी टेकिंग योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. ओके, कहीं जाइएगा मत. आप अपना ये जो म्यूजिकल टाइम है अपने लिए अपने यू नो हेल्दी मेंटल के लिए यू नो योर हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ के लिए फोकस कीजिएगा. हैव फन, एंजॉय कीजिएगा द नेक्स्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आप सभी के नाम. RM2 रेडियो मस्ती.

चलिए इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है. यू टेक केयर गाइस. नीलमणि आ रही है फॉर द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शन एज फ्रॉम 12 से 2. अब तो जानते हैं डान में मेरी लेना आपको पहुंचा ही देगी और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गानों के साथ साथ. यू नो यू टेक केयर गाइस. आई एम टू रेडियो मस्ती. बट दैट वाज मनीष. बाय बाय.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Din ke 12 baje hai. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में एफसीसी ने कल 2 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक पूर्व असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। राजकुमार सिंह और रंजीत देवजी से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। दोनों अधिकारी जो स्पेशल इंटेलिजेंस सेल की स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट में तैनात थे, आज अदालत में पेश किए जाएंगे। ये जांच 30 मार्च 2024 को वालिदे पत्र के एक निवासी के घर पर की गई।

0: तलाशी कार्रवाई के से जुड़ी हैं, जहां से बड़ी मात्रा में नकद पैसे बरामद किए गए थे। एफसीसी की जांच से संकेत मिलता है कि दोनों अधिकारियों ने तलाशी वारंट के तहत मिले अपने अधिकारों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है। पूर्व एएसपी राजकुमार सिंह के खिलाफ एफसीसी की एक और जांच भी चल रही है, जो रिवॉर्ड मनी मामले से संबंधित हैं। उन्हें अगस्त 2025 में भी गिरफ्तार किया गया था। कल शाम पुतोदो में 54 साल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है। जाक लुई फिडेल को चाकू लगने के बाद गंभीर हालत में गुडलैंड स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में उन्हें एसएसओएन अस्पताल स्थानांतरित किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गिजिदों सेंट क्लेयर से इस नाबालिग संदिग्ध को गिरफ्तार किया। संदिग्ध, जो मृतक के भाई का सौतेला बेटा है, ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद उसने शाक लुई फिडेल पर हमला किया। सिग्नल माउंटेन पर प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर कृषि उद्योग मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जनता को सूचित किया जाता है कि फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स एक्ट की धारा 14(2) के तहत कोई भी व्यक्ति वन संरक्षक की लिखित अनुमति के बिना वन, पहाड़, नदी या प्रकृति में पौधों के लिए हानिकारक कोई भी वस्तु या सामग्री नहीं ले जा सकता। किसी आरक्षित क्षेत्र से वन पैदावार को नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना, खोदना, हटाना या अपने कब्जे में रखना, पशु को चराना, बंदूक या किसी प्रकार का औजार अपने पास रखना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी आरक्षित क्षेत्र में कचरा, कोई वस्तु या खतरनाक या आपत्तिजनक सामग्री नहीं फेंक सकता। संरक्षित पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 का जुर्माना और 24 महीने की कैद की सजा हो सकती है, और इसके अलावा अदालत अन्य दंड भी लगा सकती है। अगर किसी उल्लंघन का संदेह हो तो फॉरेस्ट्री सर्विस को इन नंबरों पर फोन किया जा सकता है, 6707254 या 6707255 पर। और विदेशी खबरों में, रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये इस साल कीव पर हुए सबसे घातक जानलेवा हमलों में से एक माना जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। एवेन्यू ओलिये कैथोबोन में 83 साल के 83-year-old के जनाब लतीफ कासिम साहिब, जो लतीफ कामियों से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी बीबी जाइना कासिम साहिब के घर एवेन्यू ओलिये कैथोबोन से उठाकर कैथोबोन की ले बों सेजू मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम
1: पल दो पल का साथ ही सही लेकिन आपके साथ कनेक्ट करवा रहे हैं तो कोई गम नहीं है। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका रेट्रो रिदम के सफर में जहां पर आपके नाम लेकर आएंगे 70s, 80s और 90s की प्यारे प्यारे गाने। नौसो आज हम मना रहे हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें और उनमें से एक है ब्लॉगर डे, उसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इस मनी 2 बजे तक आपके लिए आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही।
2: आरएम2
3: रेडियो मस्ती Magyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est dans saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir du 9 août. Depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Beau Climat, La Flora.
4: Don de sang à la MRE. La MRE peut organiser ce don de sang le mercredi 5 août de 7h à 17h dans l'endroit suivant. Head Office MRE, Eramco, Port-Louis, Belfort Tower, rue Dauphine, Port-Louis et Custom House, Mer Rouge.

0: बेले नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: क्या गाना है, क्या डायलॉग्स भी, प्यार के उस खूबसूरत पल को फिर से ताज़ा हो कर दिया ना हमने। ऐसे ही आपके लिए और भी खूबसूरत गाने लाते रहेंगे, आप बस यहीं पर साथ देते रहिए। इट्स योर आरएमटू रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम के इस सफर को आप एंजॉय कीजिए।
1: आरएमटू रेडियो मस्ती, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस, 12 से 16 अगस्त SBICC Phi, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। इंटरनेशनल होम शॉपिंग, फूड फेस्टिवल, फैशन शो, मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही छत के नीचे। उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi, मिस मत करना। ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स, मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: ड्राइव करते समय नजरें हमेशा रोड्स पर और ट्रैफिक लाइट्स पर ही होती है। और हाँ, हमने आपको बताया था कि आज हम मना रहे हैं ब्लॉक डे, लेकिन इसके साथ साथ आज है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। कभी कभी रेड लाइट पर रुकना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, खास करके जब आप जल्दी में होते हो, लेकिन जैसे ही ग्रीन बत्ती ऑन हो जाती है, एक छोटी सी जीत वाली फीलिंग महसूस होती है ना। वैसे भी जिंदगी भी ट्रैफिक लाइट्स जैसी ही होती है। कभी लाल बत्ती हमें रुक कर सोचना सिखाती है येलो वाली तैयार रहने के लिए, और ग्रीन बत्ती हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाती है। तो आज का दिन बस इतना याद रखिए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, पेशेंस रखना है और सेफली अपनी मंजिल तक पहुंचना है। निलमनी तो यही पर आरएम2 वेडियो मस्ती पर साथ देने के लिए। चल 2 PM, अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: वैसे लफ्जों से बहुत कुछ हो सकता है बयान, इसलिए कहती हूँ 5499-1294 पर अपने दिल की बात शेयर करने के लिए आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं। वी हैव वीना जी फ्रॉम न्यूवेल फॉन्स, मूवी कवि अजनबी थे, जमीन आसमान का गाना मांग रहे अपने हबी देव के लिए, ढूंढ कर आपके लिए चिल्लाएंगे जरूर। अब्दुल जी, सारा बानो जी को भी सर बड़ा सा हेलो साथ देने के लिए। नेक्स्ट मैसेज, गाना डेडिकेट करना चाहते हो आप मीठी निकित जियाना रियाना के लिए, जरूर जी आपके लिए चिल्लाएंगे जरूर। गाना तो देर ना करते हुए अनदर लवली सॉन्ग करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बैंक अफ्रीकी बैंक विकास बैंक की नई रिपोर्ट में मॉरिशस के सरकारी वित्त को लेकर चिंता जताई गई है। 28 जुलाई को जारी कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन रुपए से अधिक के बजटीय सहायता कर्ज की मांग की है। ये राशि 2 बराबर किश्तों में मिलने का प्रस्ताव है। पहली किश्त 2026-2027 और दूसरी 2027-2028 में मिल सकती है। एमओआरई ने टैक्स वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल राज्यसभा में बताया कि वीएटी पंजीकरण की सीमा 60 लाख से घटाकर 30 लाख रुपए किए जाने के बावजूद अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच सरकार को 655 मिलियन रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। इस दौरान 8,764 नए कारोबार वीएटी में

0: शामिल हुए, जबकि सिर्फ 84 कारोबार बाहर हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सभी कारोबारियों के लिए बराबरी का माहौल बनेगा और अनौपचारिक कारोबार भी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। 156 किलो गांजा तस्करी मामले में सांसद वेरोनिक लुगुबिन आज फिर आदसू के सामने पेश होंगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसभा में बताया है कि 2 अगस्त को वो खुद आदसू पहुंची थी, लेकिन उन्हें अपने वकील के साथ आज फिर बुलाया गया। उनकी एसयूवी गाड़ी की जांच में गांजे का एक बीज और उसके कुछ अवशेष मिले हैं। वहीं उनके पति गुलशन गोविंद से कल पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने जांच में सहयोग करने और डीएनए नमूने देने का पर सहमति जताई है। उनसे आज भी पूछताछ होगी। वो उधर एफसीसी दंपति की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। आईसीटी मंत्री अविनाश रामतोहल ने आईसीटीए अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर राष्ट्रसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन संस्था का सदस्य है, इसलिए इन बैठकों और सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करना जरूरी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि खर्च कम करने के लिए अब जहां संभव होगा ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुंध 2 में 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जाक लुई फिडेल को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने रेजिडेंस सैंक्लेयर से आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में उसने विवाद के बाद हमला करने की बात कही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाला रसोई का चाकू भी बरामद कर लिया है। लाप्रेरी में हुए सी प्लेन हादसे में पोलैंड के 25 वर्षीय एक पर्यटक की मौत हो गई। विमान के पायलट को बचा लिया गया और गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। ये हिस्सा जनवरी 2025 में प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी। नासा ने कहा कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। टैगोर रोड अर्नेस्ट फ्लोरॉ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के राजनाथ बिमल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हरी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश बिमल के घर नेस्लोहों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू ओलिये काट्रोबोन में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के लतीफ कसीम साहिब इंतकाल कर गई हैं। लोग उन्हें लतीफ कामियों के नाम से अधिक जानते थे। उनका जनाजा आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी बेटी बीबी जैना कसीम साहिब के घर काट्रोबोन से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

0: Retro Rhythm. ऐसे ही टाइम टिक टिक करके ले आया है रेट्रो रिदम को सेकंड और आखिरी आओ में 1:10 हुए और नई साथ दे रही है आरम जो वीडियो मस्ती पड़ रहा है एंड आपके नाम चला रहे हैं गोल्डन टाइमलेस गाने आपके उन प्यारी प्यारी मेमोरीज को फिर से वापस लाने के लिए। साथ में हम मना रहे हैं ब्लॉग डे, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे और भी है जिनके बारे में कुछ देर में आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस यहीं पर जुड़े रहना आरम जो वीडियो मस्ती पर।
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: एक बजकर 20 मिनट हुए हैं, हाल का तो पता नहीं, लेकिन जब भी हम किसी मजबूत ब्रिज से गुजरते हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं या फोन से किसी अपने से बात करते हैं, उसके पीछे होती है इंजीनियर्स की मेहनत। आज ब्लॉगर डे, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ प्रोफेशनल इंजीनियर्स डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड आज के दिन उन सब इंजीनियर्स को सलाम, क्योंकि उनके आइडियाज को रियलिटी में बदल देते हैं वो। अगर आपके घर में भी कोई इंजीनियर है, उन्हें ज़रूर अप्रिसिएशन दिखाना, क्या पता

0: उन्हें भी अंदर से फील गुड वाली फीलिंग आ जाए। गाने तो आपके लिए जबरदस्त ही लेकर ला रहे हैं, आपके लिए रेट्रो का सफर है, आपके लिए 70s, 80s एंड 90s के गाने।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
0: Retro Rhythm.
2: Some messages आ रहे हैं non-stop from our lovely listeners जो साथ दे रहे हैं good music के लिए RM2 Radio मस्ती पर ही आप है प्रकाश शवती जी आप कह रहे हैं मौसम थोड़ा down है windy और sunny भी है आपके यहाँ हाँ जी मैं निर्मनी हूँ और मैं ठीक हूँ आप कैसे हो अनुषा जी भी connected है मांग रहे हैं गाना अपने husband नितेश के लिए बेल्वी मोगल से भी connected है कोई special love है कृष्णा जी ज्योति जी शातो बेनागस से साथ दे रही है थैंक यू साथ निभाने के लिए आपका RM2 Radio मस्ती यही पर है अभी के लिए कुमार सानू जी की आवाज़ में हो जाए गाना वैसे मौसम का हाल कैसा है आपके यहाँ बताना जरूर है 5499124 पर
0: रेट्रो रिदम
1: RM2 Radio मस्ती

0: रेट्रो रिदम।
1: रब अब टाइम हो गया इसे कैसे पता नहीं चला, और एक दिन है जो मनाया जा रहा है। लेकिन न जाने से पहले आपको बता देती हूँ, समुंदर की लहरों से दोस्ती और हवा के साथ रेस, वही तो है रेगा डे का असली मजा। एंड यस इज रेगा डे, लेकिन एडवेंचर के साथ सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर आज बोटिंग, सेलिंग या किसी भी वाटर एक्टिविटी का प्लान है, पहले वेदर चेक जरूर कीजिएगा और सारे सेफ्टी रूल्स जो है उन्हें फॉलो कीजिएगा। स्टे सेफ, फिर मिलेंगे, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और कनेक्टेड रहना आरएमजी वीडियो मस्ती के साथ में ही।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजी।

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. अमोरे ने टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बनाया है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल राष्ट्रसभा में बताया कि VAT पंजीकरण की सीमा 60 लाख से घटाकर 30 लाख रुपए किए जाने के बावजूद के बाद अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच सरकार को 655 मिलियन रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है. इस दौरान 8,764 नए कारोबार VAT में शामिल हुए जबकि सिर्फ 84 कारोबार बाहर हुए. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सभी कारोबारियों के लिए बराबरी का माहौल बनेगा और अनौपचारिक कारोबार भी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगी. 156 किलो गांजा तस्करी मामले में सांसद वेरोनिक लुगोविन आज फिर अदसू के सामने पेश हो रही हैं. प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रसभा में बताया कि वो 2 अगस्त को खुद अदसू पहुंची थी लेकिन उन्हें अपने वकील के साथ आज फिर बुलाया गया है. उनकी SUV गाड़ी की जांच में गांजे का एक बीज और उसके कुछ अवशेष

0: आदेश मिले हैं। वहीं उनके पति गुलशन गोविंद से कल पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने जांच में सहयोग करने और डीएनए नमूने देने पर सहमति जताई। उनसे आज भी पूछताछ चल रही है। उधर एफसीसी दंपति की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। पुदुदो में 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। रक लुई फिडेल को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रेजिडेंस सैंक्लेयर से आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में उसने विवाद के बाद हमला करने की बात कही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाला रसोई का चाकू भी बरामद कर लिया है। लाप्रेरी में हुए सी प्लेन हादसे में पोलैंड के 25 वर्षीय एक पर्यटक की मौत हो गई। विमान के पायलट को बचा लिया गया और गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि ये उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर भी हुए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। यह हिस्सा जनवरी 2025 में प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। नासा ने कहा है कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। चौहत्तर साल के श्री चमिल चंद्रन उदन की मृत्यु हो गई है। श्री चमिल चंद्रन उदन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विनोद के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज बल्कि कल दिन के पौने बारह बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉपुलर्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट क्वार्टर टू नून Petit Paquet Road, Montagne Blanche में 70 साल की 70 years old के दयानंद कटुना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से अधिक जानते थे। दयानंद कटुना की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे अशीव कटुना के मकान Petit Paquet Road, Montagne Blanche से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Montagne Blanche की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:08 और हमारा साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए तो वेलकम कर रहे हैं आपका, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ. दिस आवर इट्स अ स्पेशल आवर क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बी टाउन की खबरें, और बी टाउन की खबरों के साथ होती है कुछ स्पेशल गेम्स आपके लिए. सो अभी के लिए हम एक सवाल लेकर आए हैं, यानी कि शो के ओपनिंग में ही हम आपसे पूछने वाले हैं, ये जो गफूर वाला गाना है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, ये सीरीज से लिया गया है और ये सीरीज डायरेक्ट की है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर के बेटे ने, और आपको हमें उनका नाम बताना है, यानी कि वो बेटा कौन है जो बहुत ही फेमस एक्टर का बेटा है जिन्होंने डायरेक्ट की है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, अ वेरी फेमस सीरीज, और आपको हमें उनका नाम बताना है ऑन 5499-1294-5499-1294. सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. सो और भी डिटेल्स देंगे थोड़ी ही देर में. अभी के लिए सिंपल सा सवाल, गफूर गाना फ्रॉम बैड्स ऑफ बॉलीवुड, डायरेक्ट की है इसे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर के बेटे ने, उस बेटे का नाम आपको हमें बताना है ऑन 5499-1294.

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: और चलिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछा था बैड्स ऑफ बॉलीवुड डायरेक्ट की है इसे बॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर के बेटे ने सो एक्टर का नाम शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान जिन्होंने डायरेक्ट की बैड्स ऑफ बॉलीवुड और मिले हैं बहुत अच्छे रिव्यूज इस सीरीज को यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद हमारी लकी विनर आप है श्रद्धा रघुना और आप है बेलविदय से आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब कॉन्ग्रेचुलेशंस तो चलिए यहाँ पर श्रद्धा जी आपने पार्टिसिपेट किया और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली इसे आप एंजॉय कर सकते हैं एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक एट SBICC पाए 10 से लेकर रात के 9 बजे तक खेला आपने MBC और राजस्थान वर्क्स के साथ एंड लेट मी टेल यू दैट आप काफी कुछ एंजॉय कर पाएंगे आपको मिलने वाला है एक इंटरनेशनल होम शॉपिंग एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट शोज होंगे मैजिक शोज फैशन शोज लाइव परफॉर्मेंस by Indian Idol singer Parinay Jain, a special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Sir. Canma ka show hone wala hai, blood donation camps organized kiye jayenge and food festival as well. Organized by Event Works Limited aur ye hai Utsav India Mauritius Shopping Carnival 12 se lekar 16 August tak at SVICC Pi. So chaliye yahan par aise hi naam aapko milte rahenge, jeetne ke mauke milte rahenge. All you have to do is stay connected Radio Masti ke saath. Abhi ke liye lekar aaye hain aapka apna Bombay Talkies. Main hu Pari aapke saath till 4 p.m. Double, double, double.

0: So, well, ladies and gentlemen, 2:33 हो रहे हैं. कुछ beautiful songs आपके लिए हम लेकर आए हैं. On the waves of RM2 Radio Masti. That was in the magical voice of Arjit Singh. Animal film का ये गाना 2023 की very popular film. अभी के लिए it's your Bombay Talkies. मैं हूँ परी आपके साथ. लेंगे एक छोटा सा commercial break. Allot कराएंगे. Stay well connected.
1: RM2 Radio Masti.

0: आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरी साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानी, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

और चलिए यहाँ पर प्यारे गाने आपके लिए हम चला रहे हैं एंड वी ऑल्सो हैव सम डियरेस्ट लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी हमारा साथ दे रही हैं एंड उनके हबी डियरेस्ट साइलेश आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेलिब्रेटिंग 19th वेडिंग एनिवर्सरी 19 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस. तो चलिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम जरूर डेडिकेट करेंगे एंड विशिंग यू मेनी मोर ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू रोशनी फॉर साइलेश बिसेसा एंड आपके लिए बहुत सारा प्यार फ्रॉम योर टू सन्स रोनीश सैनीश ऑल्सो लव कमिंग फ्रॉम नानी शोभा एंड सभी विशेषार एंड कालीचंद परिवार की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं. हम भी विश कर रहे हैं आपको वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी 19 इयर्स आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो पार्टी तो आपसे हम जरूर लेंगे तब तक के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना एंजॉय दिस वन एंड एंजॉय योर डे.

So, चलिए अभी के लिए वी हैव द सुपर रोमांटिक गाना फॉर अ वंडरफुल कपल जो आज 19 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो स्पेशल विशेस फॉर रोशनी एंड शैलेश बिसेसा. गुड गुड विशेस. एंजॉय दिस वन.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Sound check. CPM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. एमओआरए ने टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बनाया है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल बताया कि वीएटी पंजीकरण की सीमा 60 लाख से घटाकर 30 लाख रुपए किए जाने के बावजूद अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच सरकार को 655 मिलियन रुपए की अतिरिक्त आय हुई है. इस दौरान 8,764 नए कारोबार वीएटी में शामिल हुए जबकि सिर्फ 84 कारोबार बाहर हुए. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सभी कारोबारियों के लिए बराबरी का माहौल बनेगा और अनौपचारिक कारोबार भी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे. 156 किलो गांजा तस्करी मामले में सांसद वेरोनिक लुगोविन आज फिर आदसू के सामने पेश हुई हैं. प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा में बताया कि वे 2 अगस्त को खुद आदसू पहुंची थी लेकिन उन्हें अपने वकील के साथ आज फिर बुलाया गया है. उनकी एसयूवी गाड़ी में जांच में गांजे का एक बीज और उसके कुछ अवशेष मिले हैं. वहीं उनके पति गुलशन गोविंद से कल पुलिस ने पूछताछ की. उन्होंने जांच में सहयोग करने और डीएनए नमूने देने पर सहमति जताई. आज फिर से उनसे पूछताछ की जा रही है. पुदोदो में 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. ज़ाक लुई फिदेल को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने रेजिडेंस सैंक्लेयर से आरोपी को गिरफ्तार किया. शुरुआती पूछताछ में उसने विवाद के बाद हमला करने की बात कही. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने

0: वाला रसोई का चाकू भी बरामद कर लिया है। लाप्रेरी में हुए सी प्लेन हादसे में पोलैंड के 25 वर्षीय एक पर्यटक की मौत हो गई। विमान के पायलट को बचा लिया गया और गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। विदेश की खबरों में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की फंकुल 9 रॉकेट का एक हिस्सा इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। यह हिस्सा जनवरी 2025 में प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। नासा ने कहा कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ती है शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड इक्वानियो में 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड के रामचंद्र कसिगन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान इक्वानियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोड बोबासा में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड के सुरेश रामगुलाम की मृत्यु हो गई है। वे लातूकनिग पॉइंटसाब के निवासी हैं। लोग उन्हें सुरेश कंट्रैक्टर के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के दौरान एलियंसन बुबासन से उठाई गई और अंतिम संस्कार के लिए इसी समय सिपाही भूली वाले तिपत की शमशान भूमि ले जाई जा रही है। एलियो स्ट्रीट सीते लोआजो फ्लोरियाल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी इंदसिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामजतन, लोग उन्हें देवरानी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के बल्कि कल गुरुवार को दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान सीते लोआजो फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies
4: Radio Musty
5: Radio Musty

सो बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन दिस वेडनेसडे 5th ऑफ अगस्त और प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन कर रहे हैं साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती और आपके लिए बस ऐसे प्यारे गाने चलते रहेंगे फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज जहां पर आपके लिए लेकर आए हैं बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स वी ऑल्सो हैव कुछ मैसेजेस डेडिकेशन जो यहाँ पर पहुंच गए हैं सो दिस आवर में डेफिनेटली होने वाले हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन सो स्टे कनेक्टेड फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटिफुल गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम Enjoy this one.

So, well, एक और ब्यूटीफुल गाना, सुपर रोमांटिक गाना आप सभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में, ये गाना आप सभी के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. फॉर द लिसनर्स, थैंक यू सो मच जो आपके इतने प्यारे मैसेजेस हम तक आपने पहुंचाए हैं. एंड वेल, अभी के लिए वी हैव शिवानी हमारा साथ दे रही हैं, आप यही मोका से वर्किंग एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. सो ये गाना हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं, करेज टू यू एंड एंजॉय द सॉन्ग्स. साथ ही यहाँ पर विशिंग लवली वाइफ निशा अ वेरी हैप्पी बर्थडे, उनकी आज गोल्डन जुबली है और उनके लिए स्पेशल विशेज लेकर आए हैं पति संजीव, बेटी सेल्वी और सभी देविदास परिवार ऑफ बॉम्बू जो उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. जीना जोयसरी अपनी गुड विशेस के साथ, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ आई हैं ऑन रेडियो मस्ती, गाना आपके नाम. एंड वेल, यहाँ पर मोशवाजी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे लिसनर और आप हैं रोशनी, यू आर सो लकी ऑन अ वेनसडे आफ्टरनून, आप हैं एट मोशवाजी, सो एन्जॉय द टाइम, एन्जॉय योर वेनसडे. एंड वेल, ये गाना आपके नाम एंड आई डू होप दैट आपका ये जो आपकी ये जो दोपहर है इसे हम थोड़ा सा रोमांटिक बना सके विद दिस वन. फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

अदा करने वाले इस एक्टर को आमिर खान की फिल्म गजनी में विलन का किरदार निभाने के लिए पहचाना जाता है। बुधवार को प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार किया गया, यानी कि आज ही के दिन, और अंतिम यात्रा में आमिर खान पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। वहीं एक्टर रजा मुराद, एक्ट्रेस रूहानिका धवन समेत कई सेलेब्स वहां पर नजर आए। सभी के लिए तो हम कुछ खास तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऑफकोर्स इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। गजनी में जो किरदार गजनी का था वो उन्हीं की वजह से फेमस हुआ था, एंड आज भी हम उन्हें उस किरदार के लिए याद करते हैं, और 150 से ज्यादा फिल्मों में वो नजर आए हैं। सो अभी के लिए तो बस इतना कह पाएंगे, करेज टू द फैमिली, एंड हमेशा यादों में उन्हें हम याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ, एंड लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज़।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, चार बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। लापरेही के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी दुख का माहौल है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही, साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की। ये जांच का एक अहम चरण है ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। मॉरिशस के बंदरगाह की गतिविधियों में लगातार 2 साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2026 के बीच माल की आवाजाही, कंटेनरों के कारोबार और जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराने जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान जहाजों को 11 लाख टन ईंधन बेचा गया। वहीं 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में एमपीए ने 629.6 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया।

0: माया इन अच्छे नतीजों के बाद अब फोर्ट विलियम में नया मछली बंदरगाह बनाने और कंटेनर रखने की जगह बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल शाम अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। ग्रैनविल नॉर्थ वेस्ट में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन देश की एकता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता का भी आह्वान किया। कथित रिश्वतखोरी और अवैध धन के मामले में आज दो पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया। राजकुमार सीयू, जिन्हें 2025 में चर्चित रिवॉर्ड मनी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, और रंजीत देवजी पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर फायदा लेने का अस्थाई आरोप लगाया गया है। ये मामला मार्च 2024 में वाली दिपखत में की गई एक तलाशी और वहां से बड़ी रकम बरामद होने से जुड़ा हुआ है। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा आज चंद्रमा से टकरा गया। करीब 4 टन वजनी ये हिस्सा पिछले साल रॉकेट प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। वैज्ञानिक अब दूरबीनों की मदद से इस टक्कर की पुष्टि करने में जुटे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। इन खबरों को हम बेशक विस्तार देंगे 6:30 के समाचारों में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: You're listening to RM2, a radio masti.
2: Raftaar vibes, filmy rides.
1: RM2.
3: Man ka radio, bajne de zara.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: आई गेस कि मन का रेडियो तो अब बजना शुरू हो गया है क्योंकि 4 बज गए हैं और पार्टी अभी शुरू हो गई है आपके और हमारे बीच में ऑन आवर M2 रेडियो मैसेज। हाँ, इट्स ऑलरेडी वेनेसडे और आप सोच रहे हैं कि वेनेसडे को गिनी क्यों बोल रहे हैं कि पार्टी करना है। अरे, पार्टी करने का कोई टाइम नहीं होता है, इट्स ऑल इन योर माइंड। सो वेलकम ऑन बोर्ड जहाँ पे हम साथ देने आ गए हैं रात के 7 बजे तक इन योर रफ्तार वाइब्स एंड आई गोना टेक यू फॉर योर फिल्मी राइड्स। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड माय डियर लवली लिसनर्स, जरूर लेके जाएंगे बॉलीवुड की में फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड गानों के लिए ना एज वेल लेके जाएंगे फॉर योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज की दुनिया में वेव स्पोर्ट्स गुरु अरविंद जी और साथ में लेटेस्ट जो ट्रैफिक अपडेट्स हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। विल बी हैविंग अ गेम जहां पे यू विल बी गेटिंग अ कैडू। सो इतने सारे चीजें होंगे आज इन दिस ब्यूटिफुल शो, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ।
3: You're listening.

0: to Radio Musti. सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा, अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए, आप तो हर अपिकाशों कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा। सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जोन सच्चाई में मायना रखेला। जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
2: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est dans 16 ans ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir du 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Buklima, La Flora.
0: RM2
3: Radio Musti.
4: RM2 Radio Musti.

0: Well guys, check your time. 4:22 हो चुके हैं. वैसे हम बस इतना कहना चाहेंगे, ट्रैफिक हो या ऑफिस का स्ट्रेस टेंशन को बस बोल दो बाय बाय, क्योंकि ये है आपका रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड्स ऑन आवर टू रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं बैक टू बैक सुपर हिट्स आप लोगों के लिए, मस्ती और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी गिनिशा ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. और फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू किक स्टार्ट दिस लवली गेम. जी हाँ दोस्तों, पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून आपको बस हमें सही जवाब देना है. यस ऑन 5499-1294-599-1294, दैट्स द एग्जैक्ट नंबर जहां पे आपको सही जवाब विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस लिख के भेजना है. So what is this all about? The game, it's powered by Rajasthan Works Limited. Yes, you can play with MBC right now and Rajasthan Works Limited and win exciting prizes right now. Ji haan, you can stand a chance to win 4 entry tickets. 1, 2, 3, 4, yani ki 4 entry tickets and 1 food coupon for the gents. Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival. Yes, powered by SBI and LIC. And ye hone wala hai aaj from the 12th of August 2020. 26 till the 16th of August. और ये होने वाला है at SVICCRPI. सुबह खुलेंगे 10 बजे रात के 9 बजे तक, यानी कि late night shopping. और वहाँ पे आप experience कर पाएंगे 5 दिनों के लिए shopping, entertainment and family fun featuring जैसे कि international home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion shows, live performances. Yes, like Indian idol singer Parina Jain is going to be there. Special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Khan. Show and we are going to have a blood donation camp and food festival. और अभी के लिए अगर आप उस इवेंट के लिए जीतना चाहोगे 4 एंट्री टिकट्स, 1 food coupon for the gents Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival. So you can play with me right now. आपको बस मुझे बताना है ये जो डायलॉग अभी मैं सुनाने वाली हूँ ये कौन सी मूवी से लिया गया है.
1: Oh hello Mrs. Sprightly.
2: Oh hello sugar.
1: Would you like some tea?
2: Yes, with a drop of lemon in it.
1: Oh, and something to go with it.
2: Some cookies, please.
0: बिल्कुल जी, एकदम लवली है. सो माय डियर लवली लिसनर्स, यू जस्ट हैव टू टेल मी ये डायलॉग कौन सी मूवी से लिया गया है. 5499-1294 सेंड मी राइट नाउ राइट अवे द राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस, देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम. जी हाँ दोस्तों, ट्राई योर लक राइट नाउ राइट अवे, यू नेवर नो, हो सकता है कि आप ही हो आज का लकी विनर.
1: हेलो मिसेस स्प्राइटली.
2: ओह हेलो शुगर.
1: Would you like some tea?
2: Yes, with a drop of lemon in it.
1: Oh, and something to go with it.
2: Some cookies, please.
1: Cookies!
2: Lovely!
3: You're listening to a Radio Masti.

0: climatisation. Les services essentiels, tels que les établissements de santé, les services d'urgence, services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les infrastructures de transport maritime et aérien, les sites de production d'énergie, les services de transmission terrestre, radio et télévision, et tout autre site ou service désigné par l'Energy Efficiency Management Office ne sont pas concernés par ces mesures. Vous constatez un gaspillage d'énergie? Signalez-le par WhatsApp sur le 57 57 45 34 ou sur le 52 53 01 30. Chaque geste compte. Ensemble, économisons l'énergie pour un avenir meilleur.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, चेक योर टाइम, 4:33 हो चुके हैं. द गुड म्यूजिक इज हियर, द गुड वाइब इज हियर एंड गिनीशा इज हियर आल्सो टू गिव यू वन ऑफ द लवलीस्ट कंपनी रात की 7 o'clock तक. पूछा गया है एक सवाल जहां पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, एक भी गलत जवाब आज मुझे नहीं मिली, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो थैंक यू सो सो मच जी, और बस यूं ही साथ देते रहना. पूछा गया था एक बहुत ही आसान सा सवाल, सुनाया गया था ये डायलॉग.
5: Mrs. Sprightly.
6: Oh, hello, sugar.
5: Would you like some tea?
6: Yes, with a drop of lemon in it.
5: Oh, and something to go with it?
6: Some cookies, please.
4: बिल्कुल जी, बहुत ही लवली लवली डायलॉग था. और हमने पूछा था कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है. सो इजी, बहुत इजी था ना. कभी खुशी कभी गम, नहीं छोड़ेंगे आप लोगों का साथ, ऐसे कोई गम नहीं है. सो इट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम. सही जवाब इतने सारे मिले कि क्या करूं. रूल ऑफ द गेम, ओनली वन लकी विनर आई कैन हैव. सो लकी ड्रॉ में आज किसका नाम निकल आया है, वो है हमारी प्यारी लता मंगला जी जो रहती है मापू. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर लता जी. शी इज लता मंगला, रहती है मापू में. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर, यू आर विनिंग वन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने कहा था ना चार चार एंट्री टिकट्स एंड वन फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली आदि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC जो होने वाला है फ्रॉम द 12 ऑफ अगस्त टिल द 16 ऑफ अगस्त. और वो होगा एट SBICCRPI. सुबह खुलेंगे 10 बजे, रात के 9 बजे तक. दिस गेम वॉज पावर्ड टू यू बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड. सो कंग्रेचुलेशन टू यू माई डियर. एंड देर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द एम्बेसी टू लेट यू नो कि आईडी कार्ड लेकर आना है, अपना टिकट लेकर जाना है. सो कंग्रेचुलेशन टू यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: You're listening to a Radio Masti.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
4: Radio Masti in the mix.
5: Check your time guys, it's already 4:42 on our RM2 Radio Masti. Filhal ke liye chaliye khel ke jayenge sports ki duniya mein. Sports Guru is already here, all set for you. Good afternoon Arvind ji.
6: Good afternoon aapko, good afternoon listeners. So shuru karenge club friendlies ke saath. Kaafi match is samay khele ja rahe hain jisme AC Milan aur Inter Milan ke beech milan hai aur is samay 70 minutes played. Inter Milan 1-0 se aage. Chelsea playing against Juventus. Second half mein hai. Score 0-0. Aur Arsenal raat ko khelega Betis ke khilaaf. Mallorca ka mukabla Paris Saint-Germain se hoga. So some big guns out there aajkal. Idhar Manchester City bhi khel raha hai isi samay. Manchester City ki team, let me check kiske khilaaf hai. Ye K League yani Korean League ki team ke khilaaf. 8 Nuri ne pehla goal score kiya aur Rangers aur M Mubama ne fir se 3-1 ki lead dilayi Manchester City ko. Jazz aya hai aur wo Jazz aur usne kaptan ka armband liya. Modric on the bench Chelsea ke liye. Welbeck aur Quinda ko pehli baar ke liye khelne ka mauka diya gaya hai. So there is a disallowed goal yahan par teenager Munga ke liye aur 17-year-old ke liye ek dream appearance ho sakta tha. To ye sab match aaj khele jayenge aur saath-saath mein aaj Champions League qualification ke match bhi hain, starting with AGF versus Sabah aur Fenerbahce Sturm Graz. Third qualifying round hai ye UEFA Champions League mein. UEFA Europa League mein third qualifying round Ferencváros ka mukabla Górnik se. Fir UEFA Conference League third qualifying round Brann Apollon Panathinaikos CSK 1948. UEFA Women's Champions League qualifiers bhi aaj khele ja rahe. Kal bhi ye jari rakha jayega. That is the UEFA Europa League third qualifying round. Conference League ke match bhi khele jayenge aur kaafi friendly match bhi kal ke liye nirdharit hai. Is par kal subah aapko zyada jankariyan denge. Mohamed Salah Trabzonspor mein aa gaya hai aur shandar swagat kiya gaya uska. To jo Premier League मैसे अब वो तुर्की की टीम ट्राबज़ोंस्पोर में जा रहा है. खबर है उससे मिलेगा 15 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर और बहुत फैंस आए हुए थे इजिप्ट के कप्तान का स्वागत करने के लिए अतातुर्क एयरपोर्ट इस्तांबुल में. 34-year-old फॉरवर्ड लिवरपूल के साथ 9 साल रहा और स्कोरिंग 257 गोल्स. अभी कित Trabzonspor खेल रहा है यूरोपियन फुटबॉल, इसीलिए उसको खेलने का मौका मिलेगा इन यूरोप. साला लिवरपूल का सबसे हाईएस्ट अर्नर बना था 400,000 पर वीक, लेकिन अब उसे मिलेगा 15 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर. इधर आज इन्फेंटिनो फीफा एग्जीक्यूटिव से मिल रहा है और ये मोरक्को में मुलाकात होगी. उसके कंट्रोवर्शियल प्लान को लेकर काफ़ी उस पर आलोचनाएं हैं, इसीलिए ये मीटिंग फीफा एग्जीक्यूटिव्स के लिए बुलाया गया. अब देखते हैं क्या होगा उसका.

0: डील डिफेंडर शाबाखियार के लिए हल भी खरीद रहा है। उसने गोलकीपर जुलाकिस को खरीदा फॉर ए क्लब रिकॉर्ड, जबकि जापानीज विंग योकोटा रेंजर्स में आ गया है। तो ये सब फुटबॉल के बारे में। क्रिकेट, भारतीय टीम श्रीलंका के लिए जा रही है, कल जा रही है, उसका दो टेस्ट मैच वहां पर खेला जाएगा। और मॉरिशस में आज शानदार स्वागत किया गया रेमी फेये जो जिसने मॉरिशस के लिए 28 साल बाद आफ्टर 28 इयर्स कॉमनवेल्थ में एक गोल्ड मेडल जीता। आज मॉरिशस जूडो फेडरेशन के बहुत लोग और बहुत फैंस उसका स्वागत करने गए थे एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और हमारी अंडर 18 वॉलीबॉल टीम जो मेडागास्कर में है प्लेइंग फॉर द नेशंस कप, आज उसने अपना पहला मैच जीता कुमुरो के खिलाफ। और ये मेडागास्कर में लग रहा है कल वो खेलेगा 5 बजे लगभग इस समय, उसका मुकाबला रेनियन आइलैंड से होगा। सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी,
0: वेलकम।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin lancer extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies, des pieds par 4 pieds par 295 roupies, grand.

0: तो चलिए जी, टाइम पे तो बीटा चला जा रहा है, 4:53 हो चुके हैं। गिनेश ऑन द माइक, कंट्रोल दोस हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली। और हम तो चाहते हैं कि आराम से धीरे धीरे हौले हौले कार चलाते जाना, और आपके लिए तो म्यूजिक हम प्यारे प्यारे म्यूजिक बजाते जाएंगे। आई होप कि हमारे गानों के सिलेक्शंस में कोई ऐसा गाना है जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हो। यस, वैसे स्पीड भी है, स्टाइल भी है, और सिर्फ हिट्स भी हम चलाते हैं आप लोगों के लिए। दिस इज योर रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती, जहां द म्यूजिक नेवर स्लोस डाउन। वैसे वीकेंड का सीन हो या वीकडे का रूटीन, एनर्जी होनी चाहिए फुल ऑन, और उसके लिए रेडी है आपकी रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइट्स में, योर फेवरेट हिट्स, योर फन और मस्ती, ओनली ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। टू ऑल दोस हु आर स्टिल एट वर्क, कुराज टू यू माय डियर। टू ऑल दोस जो घर पहुंच चुके हैं, हम तो कहेंगे कि आप 10-15 मिनट आराम से बैठ जाइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टेक आउट सम टाइम फॉर यू, सेल्फ केयर इज सेल्फ लव। और अगला गाना हम बजाएंगे आप लोगों के लिए, टेक एवरीथिंग हल्का हल्का।
1: You're listening to

0: अवतार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2 तो चले जी, अभी के लिए 5:21 हो चुके हैं। वेदर यू आर हेडिंग होम और हेडिंग आउट, आप अपने सज्जने को हमेशा अच्छा सा बना लेना बाय लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन रफ्तार वाइब्स। में आ गई हूँ मैं और वैसे हमेशा आ जाती हूँ शाम की 4 से लेकर 7 तक आपका साथ देने के लिए विद योर फेवरेट गाने एंड यस डेली डोज ऑफ म्यूजिकल मैडनेस ऑनली ऑन रेडियो मस्ती माइडिया। और साथ साथ में योर डेडिकेशन आपने बड़े प्यार से भेजे हैं ऑन 5499129 पर। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट, किसने किसको याद किया है। आई हैव बडवाग बिरेसी जी, ये अगला गाना आपके लिए, आपके अपनों के लिए, ललिता जी, टन जी, आपके लिए, आपके सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आप बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। वीना जागी साहब फ्रॉम बेलवी मोहल, एक बर्थडे वाला गाना आपकी भतीजी डॉली कनाय के लिए। सो विशिंग हर हैप्पी बर्थडे और सभी परिवार की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू एंड वेल इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे, भतीजी डॉली ये है आपके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू डॉली एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर पुपू वीना की तरफ से, जो आपसे बेतहा बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एंड विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड वेल टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज एज वेल। आई जस्ट वांट टू विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू। एंड चलिए, वी डू हैव अरविन हलकोरी जी, आप भी हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, सो ऑसम म्यूजिक, कीप इट अप द गुड सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू सो मच माय डियर। और ये अगला गाना आपके लिए। एंड वी डू हैव अजय मधु जो कानूत से हैं और वो गाना सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एंड शादी की सालगिरह है आज, 30 साल हो गए, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड बेस्ट विशेस बड़े बच्चे येशना, रचना और सभी मधु परिवार की तरफ से। एंजॉय टू द मैक्स, इट्स योर डे माय डियर। तो चलिए जी, वी डू हैव दहन श्वेता रविश प्रशल रविश अना पैडू फैमिली, अगला गाना आपके नाम।

I told you now, party to अभी बाकी है मेरी जाना, क्योंकि on our interview radio message there's no weekend, there's no weekdays. Party तो हमेशा करते ही रहते हैं. It depends all about your mood. अभी तो सारे पांच बज चुके हैं और अगला गाना हम dedicate करना चाहेंगे Mr. Shyam Devi Chuan के लिए, जो बोलते हैं सारे गाने जो हैं गिने, it's mind blowing. Thank you so so much, my dear. बस यूं ही साथ देते रहना. And we do have the next one for someone जिनका नाम है Jugs, from someone very special जो आपको याद कर रहे हैं. And for those who are sitting in a bus right now, chaliye ji, ye agla gana aapke naam. Drivers, conductors, this one goes out to you straight away from my heart to yours. Aise dekha jaye zindagi mein agar kisi ko bolna hai I love you, koi bhi bhasha mein agar bol de, chalega na, I love you. Ti amo, je t'aime, main aapse pyar karti hu, mukunta toi. Oh my God.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
2: Well guys, I really hope that you are really loving these beautiful गानों का selections जो लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. Hello Mr. Driver, everything okay? Heading कहाँ पे जा रहे हो? घर? Okay, तो आप आराम से गाड़ी चलाना और चलाते चलाते अगर आपको एक fashion tips हम दे दे तो कैसा चलेगा? तो ladies, beautiful ladies जो साथ दे रहे हैं हमेशा हम आपको fashion tips देते ही हैं आपकी रफ्तार vibes में. So ladies, fashion का golden rule है confidence. आपका golden rule है confidence. Actually confidence is your best outfit. जो पहनो उसे स्टाइल के साथ कैरी करो और कॉन्फिडेंस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है. इसलिए आज का स्टाइल मंत्रा है लेस इज मोर, यानी कि एक सिंपल आउटफिट के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स या स्टाइलिश हैंडबैग और लुक हो जाएगा इंस्टेंटली ग्लैमरस.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.

सच अ लवली ट्रैक इन द लवली वॉइस ऑफ उषा उत्थप आप लोगों के लिए रेखा भरवाज के आवाज में भी है डार्लिंग जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे डार्लिंग कैसे हैं सभी लोग उम्मीद करते हैं दैट यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज टुडे चलिए जी हैप्पी बर्थडे टू यू और अगला का नाम तमाम सुनने वालों के नाम जो बड़े प्यार से गाड़ी चला रहे हैं धीरे धीरे बस अपने रेडियो का वॉल्यूम अब बढ़ा लीजिए क्योंकि आई हैव गॉट यू समथिंग वेरी स्वीट वेरी हार्ट टचिंग ये है आशकिंग और खंगथन सराइजो की आवाजों में Yes, I love you.

0: You're listening to a Radio Masti. वेलकम हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं. थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे 6 की समाचारों की ओर और उसके बाद गुड म्यूजिक कंटिन्यूस. स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर 1 रेडियो स्टेशन. जी हां, मैं हूं गिनिशा और साथ दे रही हूं.
1: यू आर लिसनिंग टू

नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाप्रेरी में सी प्लेन हादसे के बाद जांच तेज, नेशनल कोस्ट गार्ड ने मलबे की तलाश जारी रखी और दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने का अभियान चलाया। इस बीच 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की मौत से शोक का माहौल बना हुआ है। मॉरिशस के बंदरगाह ने लगातार 2 वर्षों में गतिविधियों का नया रिकॉर्ड बनाया। कंटेनर कारोबार और जहाजों को ईंधन की आपूर्ति में बढ़ोतरी के साथ एमपीए ने अच्छा मुनाफा दर्ज किया। अब फोर्ट विलियम में नए मछली बंदरगाह और कंटेनर सेक्टर के विस्तार की तैयारी। मॉरिशस तेलुगु महासभा ने मनाया अपना 80वां स्थापना दिवस। समारोह में प्रधानमंत्री

0: डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। जूनियर मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद सिडनी पियर ने अपने राजनीतिक भविष्य पर दी पहली प्रतिक्रिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले रेमी फ्योये का स्वदेश लौटने पर शानदार स्वागत। उन्होंने 28 साल बाद मॉरिशस को इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिलाया है। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराया। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। लाप्रेरी के समुद्र में मंगलवार को हुए सीप्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी दुख का माहौल छाया हुआ है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही। साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की। ये जांच का अहम चरण है ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले अभी सुर्खियों में कि मॉरिशस के बंदरगाह की गतिविधियों में लगातार 2 साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2026 के बीच माल की आवाजाही, कंटेनरों के कारोबार और जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराने जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान जहाजों को 11 लाख टन ईंधन बेचा गया। वहीं 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में एमपीए ने 629.6 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया। इन अच्छे नतीजों के बाद अब फोर्ट विलियम में नया मछली बंदरगाह बनाने और कंटेनर रखने की जगह बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। सुनिए,
1: बंदरगाह ने अपना वित्त वर्ष रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ समाप्त किया। पिछले वर्ष की तरह जब 9.8 मिलियन टन माल की हैंडलिंग, 7 लाख कंटेनरों का संचालन और 4,000 से अधिक समुद्री जहाजों का आवागमन दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष 2025-2026 में बंदरगाह ने और बेहतर किया। इस दौरान माल यातायात 10 मिलियन टन पार कर गया, जबकि कंटेनरों की संख्या बढ़कर 7,90,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा कई जहाजों ने पोर्ट में ईंधन भरा, जिसकी कुल मात्रा 1.1 मिलियन टन रही। एमपीए की महानिदेशिका अरुणा बनवारी राम साहा ने कहा,
2: बंकरिंग
1: के लिए भी बहुत से जहाज पोर्ट में आते हैं, 4,100 से अधिक, 2,500 केवल बंकर के लिए आए अथवा अन्य सेवाओं के लिए। कई कारणों से पोर्ट में बंदरगाह फायदेमंद है, राजनीतिक स्थिरता, सेवा की किस्म, जलवायु को लेकर ज्यादा सुरक्षित है। डबान जैसे बंदरगाह में लंबी कतारें होती हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2025-2026 के वार्षिक रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार एमपीए ने 629.6 मिलियन रुपए का लाभ अर्जित किया। इस उपलब्धि के पीछे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि रही। आयातित माल की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला, सीमेंट और गेहूँ सबसे प्रमुख रहे। उदाहरण के लिए इस अवधि के दौरान 7,95,000 टन सीमेंट मॉरिशस लाया गया। इन अच्छे परिणामों की बदौलत एमपीए की खुद की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की क्षमता बढ़ी है। अगले 5 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5 बिलियन रुपए निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें फोर्ट विलियम भी शामिल है। फोर्ट विलियम में 50 हेक्टेयर से अधिक हैं। वहाँ एक तीसरे ड्राई डॉक की योजना निर्धारित है। एक फिशिंग पोर्ट भी कॉन्ट्रैक्टर पाने के लिए टेंडर पर काम किया जा रहा है। पोर्ट भी केवल व्यापार ही नहीं बल्कि क्रूज बंदरगाह भी हैं। इस अवधि में 47 क्रूज जहाज लगभग 58,000 यात्री लेकर यहाँ पहुँचे। अभी 124 मीटर की जेटी को बढ़ाने की योजना है ताकि बड़े क्रूज जहाज को बेहतर सेवा मिल सके। बिडिंग प्रोसेस जारी है कंसल्टेंट के लिए। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 4 टगबोट की खरीद भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जहाजों के लिए डिजिटल कस्टम्स प्रणाली लागू होने के बाद मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ये जहाजों के आगमन, बंदरगाह पर ठहराव तथा प्रस्थान के दौरान आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराएगी।
0: तो लाप्रेरी के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी वहां पर दुख छाया हुआ है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही, साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की। लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। सुनिए रिपोर्ट।
2: लाप्रेरी में मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे तट से 600 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त जल विमान के आखिरी मलबे तलाशे जा रहे हैं।
3: C'est un énorme débris qui tuait flotté, nous récupéré, nous finir à nouveau en inquiring officer de la police. C'est la station de Bellombe qui occupe ça. Nous, l'intention, c'est de retirer l'avion là depuis la mer. Mais pour nous qu'à faire, hein, nous avons une directive de la Department of Civil Aviation. Nous attendons cette instruction. C'est eux qui peuvent dire nous comment nous procéder pour nous qu'à récupérer cette épave.
2: विमान में पोलैंड के 21 साल के पर्यटक डोमिनिक पोटेप्स्की सवार थे, जो 29 जुलाई को यहां छुट्टियां मनाने आए। उनकी मां ने उन्हें सी प्लेन की ये सवारी उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था। एक ऐसा सफर जो उनकी छुट्टियों को यादगार बनाने वाला था, लेकिन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। उनका शव समुद्र में 2 मीटर की गहराई पर मिला। बचाव दल उन्हें मलबे से बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
3: Actuellement, dans les intensive care unit de l'hôpital Welking, ils font undergo and surgery. Apparemment, il y a un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Aussitôt qu'il est récupéré, nous pouvons pas avoir un petit peu plus éclaircissement sur cet incident qui n'a rien dit alors.
2: फाइबरग्लास से बना ये हाइड्रोप्लेन पिछले 10 सालों से कार्यरत मॉरिशन कंपनी बोन टू फ्लाई का है, जो लगून के ऊपर हवाई यात्रा के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से मोन इलाके में लगून फ्लाइट नाम से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।
3: Le propriétaire là actuellement nous peut prendre ce statement à la station et nous peut gagner un coup avec tout ce ban condition avec tout ce ban permis qu'il y a, pas tout ce ban d'affaires à jour. Et nous avons une instruction qu'il ne faudrait pas les tamper avec une évidence avant qu'il décide de faire une investigation.
2: सामान्य यात्री विमान के विपरीत इस प्रकार के हाइड्रोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स नहीं होता, इसीलिए नेशनल कोस्ट गार्ड द्वारा बरामद विमान के मलबे का विश्लेषण और मौसम की परिस्थितियों के अध्ययन से जांचकर्ताओं को हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।
3: Les Pavlans nous pour transférer nous pour voler la station de Bellombe là et au niveau investigation c'est l'équipe DCA, l'équipe FSL et forensic science officer qui pour découvrir.
2: अब नजर जांचकर्ताओं पर है। उनका एक ही उद्देश्य है ये समझाना कि आखिर क्यों एक रोमांचक हवाई यात्रा और जन्मदिन का ये तोहफा एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गया।
0: मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल शाम अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन देश की एकता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता का भी आह्वान किया।
1: मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल अपनी सीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई। समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। मॉरिशस तेलुगु महासभा को अपने लंबे सफर के लिए बधाई देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने देश के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के योगदान की सराहना की।
4: Ben, association socio-culturelle a une grande responsabilité pour préserver l'unité, pour préserver l'harmonie sociale. Nous n'avons pas valeur ici qui nous connaît. Nous n'avons pas la force qui nous connaît. Nous, la force, c'est ça même, nous, diversité culturelle. Une grande force. Mais nous pouvons faire ça avec une source de division. Bon, faut tout le monde dire hein, que tel monde nous met tel gaz à telle communauté. Pas comme ça qu'elle peut progresser. Elle peut progresser quand on met le monde qui est capable de vivre.
1: आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सरकारी नेता ने देश के सामने पाई जा रही विभिन्न

0: कथित रिश्वतखोरी और अवैध धन के मामले में आज दो पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया। राजकुमार सीऊ, जिन्हें 2025 में चर्चित रिवॉर्ड मनी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, और रंजीत देवजी पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर फायदा लेने का अस्थाई आरोप लगाया गया है। ये मामला मार्च 2024 में वैली दिपैत में की गई एक तलाशी और वहां से बड़ी रकम बरामद होने से जुड़ा हुआ है।
1: 2024 में वाली दिपहत में मारे गए छापे के वक्त पूर्व एएसपी राजकुमार सीयू और इंस्पेक्टर रंजीत देवजी एसएसयू के स्पेशल इंटेलिजेंस सेल में थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या दोनों संदिग्धों ने तलाशी के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, बरामद रकम को किस तरह जब्त किया गया, कैसे ले जाकर रखा गया और क्या कुछ प्रक्रियाओं को जानबूझ कर नहीं किया गया और क्या पैसों की मांग की गई या नहीं। अदालत में एफसीसी ने दोनों संदिग्धों की रिहाई का विरोध किया। आयोग ने मुख्य रूप से गवाहों को प्रभावित किए जाने या जांच में हस्तक्षेप की आशंका का हवाला दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
0: जूनियर मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद सिडनी पियर ने अपने राजनीतिक भविष्य पर दी पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने लेबर पार्टी में बने रहने और सरकार के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय के

0: आवाज उठाने की बात कही है। आज उन्होंने प्रेस से मुलाकात की।
1: ब्राजील में अपने दफ्तर में सिडनी पीए ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना बयान दिया। पिछले शुक्रवार को उन्हें पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया गया था। कारण, उन्होंने फाइनेंस बिल की धारा 12 जो पेंशन सुधार से संबंधित हैं के विरुद्ध मतदान किया। इस बुधवार को मीडिया से बातचीत में सिडनी पीए ने बताया कि वो सरकारी बहु पक्ष में बैकबेंचर के रूप में ही संसद में बने रहेंगे। मीडिया के अन्य सवालों के जवाब में चुनाव क्षेत्र नंबर 19 स्टेनली रोज हिल के सांसद ने बताया कि फाइनेंस बिल पर मतदान से पहले या उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी बात की जो उनके पद से हटाए जाने का मुख्य कारण बना।
2: Donc nous dans la constitution mentionné que cabinet ministres zot bizarre avec la solidarité collective parce qu'ils ont fait partie du cabinet du nouveau ministre pas faire partie du cabinet. Connais ce qui n'est arrivé vendredi là, c'était un précédent mais intéressant dans la vie démocratique d'un pays. Basel là nous bizarre pousse le débat encore plus loin est-ce qu'il nous amène du nouveau ministre dans le cabinet.
1: सिडनी पीए ने आगे कहा कि उनके सभी निर्णय सबसे पहले जनता के हित को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। उनके लिए यदि भविष्य में उन्हें लेबर पार्टी छोड़नी पड़ती है तो वो विपक्ष में एक निर्दलीय सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
0: स्वास्थ्य के सेक्टर में बांग्लादेश ने आज मॉरिशस को चिकित्सा उपकरण भेंट किए। इस सहायता में अस्पताल के बिस्तर और व्हीलचेयर जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। उनका उपयोग पोर्ट लुई के जीतू अस्पताल में किया जाएगा। ये सहायता मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच मजबूत मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। कई वर्षों की देरी के बाद प्लेनमानियो में डीबीएम के एसएमई पार्क परियोजना का काम जल्द फिर से शुरू होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बनाई जा रही इस परियोजना का काम बाढ़ और उससे जुड़े सुरक्षा खतरों के कारण रुक गया था। इस पर अब तक करीब 200 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए अब एक समाधान भी तय कर लिया गया है जिससे परियोजना का काम फिर से आगे बढ़ पाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 किलो से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले रेमी फ्योये आज स्वदेश लौट आए हैं। ग्लासगो में मिली इस जीत के साथ उन्होंने 28 साल बाद मॉरिशस को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। देश पर लौटने पर उनका भावनात्मक स्वागत किया गया। और हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में सुर्खियों में कि स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराया है। वैज्ञानिक अब इस टक्कर के सबूत जुटाने में लगे हैं जबकि विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे पर चिंता जताई है।

और अब चलिए जानते हैं कि मॉरिशस में मौसम का हाल स्थानीय स्तर पर कैसा रहेगा। मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है और पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को और कल सवेरे के दौरान रह रहकर देश के ऊंचाइयों और पूर्व में रह रहकर वर्षा हो सकती है। ऊंचाइयों पर धुंध छाई रहेगी। कल दोपहर बाद के मौसम की बात करें तो पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर मौसम कुछ खराब ही रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा

तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साली इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्यास्त 5:53 पर, सूर्योदय 6:37 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

0: 6:29 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का राइट नाउ वंस अगेन इन योर रफ्तार वाइब्स। वेलकम इन द थर्ड आवर। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर।
1: यू आर लिसनिंग टू

0: वल जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं दैट यू आर लविंग ईच एंड एवरी सॉन्ग दैट वी आर प्लेइंग फॉर यू दिस आफ्टरनून दिस इवनिंग. आज है वेडनेसडे 5th ऑफ अगस्त. एज़ टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन रेडियो मस्ती.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

आप किसी को दोष ठहराना चाहते हैं तो दिल की सुनिए, और अगर दिल कहता है कि दोष प्यार करने वालों की है तो आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी प्यार करने वालों पर भी उंगली उठाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार गुनाह है तो सब लोग इस गुनाह करने के लिए एकदम तैयार हैं, और प्यार तो एक खूबसूरत जज्बात है, और उसी जज्बात का एहसास दिलाने के लिए हम एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। वेल फ्रेंड्स, 7:06 हो चुके हैं, वेंसडे इवनिंग 5 अगस्त 2026, एंड धीरे धीरे ये महीना चल ही रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपका काम अच्छे से चल रहा है और थके हारे आप घर वापस आए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, एंड अभी तो आराम करने का ही वक्त है। 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक आपको लेकर चलेंगे प्यार की दुनिया में, जहां पर प्यार का सिर्फ बसर होगा, और अगर आपको कुछ प्यार का एहसास करना है आँखें बंद करके हमारे गीतों को सुनिए और बस प्यार में खो जाइए। वेल यहाँ पे आ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि रास्ते पर काफ़ी गाड़ियाँ हैं, सो अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव करके अब भी घर वापस जा रहे हैं काम से, या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड केयरफुली, एंड लेट मी टेल यू कि काफ़ी इलाकों में ज़ोरदार हवाएँ बह रही हैं, एंड इससे क्लाइमेट चेंज भी आता है और इससे सीजनल फ्लू भी आता है। सो प्लीज़ आई होप अपनी तरफ से आप अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, एंड जितना हो सके आप गर्म पानी पीजिएगा, एंड आई नो कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो जाता है इस विंटर सीजन में, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो चलिए दिव्या का साथ ABC लेकर रात्रि के 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज कुछ खूबसूरत रोमांटिक गीतों के साथ, और साथ में आपके मैसेजेस को कैसे मिस कर सकते हैं, ऑफकोर्स हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499 1294। यस 5499

0: 1294 पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Pi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Pi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: 10 roupies, 50 roupies, 100 roupies, des 100 roupies. Oui, ou fin bien attendez. La Foire Fouille présente tous ce Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park. Ban milliers lotiques à prix foufou. Cosmétiques, meubles, textiles et plus encore, et n'indice tout. Parata l'occasion là. Prends famille, voisins, camarades, vin fin les tout. Nous pouvons attendre. La Foire Fouille Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park.
3: C'est la fête à la maison. La Foire Fouille.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2
4: Radio Musty.
5: जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कर की आवाजों में ब्यूटीफुल सा ये गाना तारों के शहर. अक्सर प्यार करने वालों को नजर लग जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र कभी कभी खुद की लग जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी इतना प्यार मिल जाता है कि इतना प्यार दामन में समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और ख़ुद से हम सवाल करते रहते हैं कि क्या मैं इस प्यार को डिज़र्व करती हूँ या फिर डिज़र्व करता हूँ. तो जवाब बस दिल का है, दिल की सुनिए. और अगर आपका दिल कहता है कि हाँ आप इस प्यार के हकदार हैं, तो बिल्कुल इसके अलावा आपको शक ही नहीं करना है. और वैसे क्यों ना हो, हर कोई सच्चा प्यार का हकदार ही होता है. इसीलिए तो हमेशा आपके लिए हम प्रे करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि बस आपका प्यार सलामत रहे. चलिए, तारों के इस शहर में आपको भी हम प्यार की गली तक पहुंचा कर ही रहेंगे, क्योंकि प्यार ही मंजिल है.

0: Well, just to add, कि जिंदगी उदास नहीं होती है, इसको बनाई जाती है. अगर जिंदगी में हमेशा आप कंप्लेन करते रहेंगे तो कभी भी आपको खुशी दिखाई नहीं देगी. कभी ऐसा होता है ना कि दुख के झुंड में आप बस भूल जाते हैं कि खुशी एग्जिस्ट करती है. और बस आप इन कोहरे को हटाइए और देखिए आगे आपकी खुशी आपके सामने खड़ी है. एंड जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आप वेट करते हैं कि कब आपके साथ कुछ एक ऐसा बड़ा चीज़ हो तभी आप खुश रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. डेली रूटीन में कहीं ना कहीं से आपको छोटी छोटी खुशियां मिल ही जाती हैं. एंड यू नीड टू एक्नोलेज इट. और साथ में कहते हैं ना कि द बेस्ट एटीट्यूड इज़ ग्रैटिट्यूड. अगर छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा आप खुशी ढूंढते रहेंगे तो आप अननोइंगली और भी खुशी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे. तो चलिए, अगर आपकी ज़िंदगी उदास है तो डोंट फॉरगेट, ये ज़िंदगी उदास नहीं है, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है और ये आपकी सोच में है. इसको बाहर निकालिए और आप ऐसे सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी गम नहीं है और आप खुश ही खुश हैं. आई नो इट्स नॉट पॉसिबल जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव का ही नाम है. और जहाँ पर खुशी है वहाँ पर गम भी आते हैं और जहाँ पर गम है वहाँ खुशी आ ही जाती है. लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए और अच्छी तरीके से ज़िंदगी को स्पेंड करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज़ कीप ऑन स्माइलिंग. देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में गम है, अगर आप गम की वजह से हंसना मुस्कुराना भुला देंगे या फिर छोड़ देंगे तो ऐसे में गम तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गम में भी खुशियां मनाइए और हंसिए मुस्कुराइए. एंड आई नो कभी कभी एडवाइस देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको पुटिंग दिस इनटू प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन ट्राई तो करिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. ट्रस्ट मी, अगर आप हंसने लगेंगे मुस्कुराने लगेंगे और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो लाइफ विल डेफिनेटली गेट बेटर. चलिए, यहाँ पर रेडियो मस्ती का साथ है और दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती ऑफ कोर्स, जहाँ पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: जब प्यार होता है तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कहते हैं प्यार में सौदेबाजी होती है, एक हाथ से आप दिल लेते हैं तो दूसरे हाथ से दिल देते भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिल की सौदेबाजी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे ही प्यार को आप और भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एंड कहते हैं ना कि जब प्यार में आप मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा प्यार बदले में एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये तो दिस इज़ वेरी ह्यूमन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बदले में आपको भी थोड़ा सा प्यार मिलेगा, तो ऑफकोर्स ये आपका हक बनता है। एंड चलिए प्यार को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ और खूबसूरत गीत लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। नेक्स्ट गाना गुजार फॉर कुंदन सुखलाल फ्रॉम मिलजान गुडलैंड्स, आज आपका बर्थडे है, 64 years आप जियो हजारों साल। बेस्ट विशेज फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड्स सोना एंड बिंदिया, सभी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। और साथ में यहाँ पर करिश्मा के लिए अगला गाना हम खासतौर से दरी करेंगे। वी ऑल्सो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर ऋषि विदेशी एंड ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, एंड साथ में टू योर मूडी गर्लफ्रेंड ऑफ बॉम्बू एंड टू ऑल द हैवी व्हीकल ड्राइवर्स, थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यार से सबके बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए लगे हाथ ये अगला गाना टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

0: कुछ ऐसे गाने होते हैं जो दिल को नहीं बल्कि रूह को छू जाते हैं, एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ दिस काइंड ऑफ गाना जहां पर आप इसको इस हद तक महसूस करते हैं कि आपको थोड़ा और प्यार हो जाता है. वेल फ्रेंड्स, गाने सुनाते सुनाते, प्यार की बातें करते करते ये वक्त कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है. 8:10 हो चुके हैं. एक बार फिर से वेलकमिंग यू इन द सेकेंड आवर ऑफ इवनिंग लाउंज, एंड चलिए कुछ और आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं. सो थोड़ी देर में हम एक बार फिर से आपके मैसेजेस को हम वेलकम करेंगे. आई नो जब भी आपके मैसेजेस आते हैं तो आप लोग रेडियो सेट की और भी नज़दीक आ जाते हैं और वेट करते हैं कि कब आपको अपना डेडिकेशन सुनने को मिलेगा. सो थोड़ा पेशेंस, और वैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है. तो कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके डेडिकेशन ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: चलिए बढ़ते हैं आपकी कुछ खूबसूरत मैसेजेस की ओर जो आपने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं. एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम दरकेज करेंगे. Of course, a beautiful song for my lovely wife Reema and beta Ridvansh from hubby Anish. Thank you so much. And yahan par aap kehti hain, hello team, listening to Radio Masti while working from home. और आप एक बहुत ही रोमांटिक गाना डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर योर हस्बैंड आकाश. वांटेड टू थैंक हिम फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट सपोर्ट. आई लव हिम सो मच फ्रॉम अ वाइफ कृति. कृति, आई गेस यू आर रियली वेरी लकी अगर कोई पत्नी अपनी पति के लिए इतने खूबसूरत अल्फाज लिख सकते हैं. सो आई कैन डेफिनेटली डेफिनेटली इमेजिन कि आपके पति कितने खूबसूरत इंसान हैं इन एंड आउट. सो हैट्स ऑफ टू योर हस्बैंड. एंड आप ऐसे ही मिलकर रहिए एंड सुख दुख के साथ ही बनकर एक दूसरे का साथ देते रहिए. गुड इवनिंग दिव्या, वांट टू विश माय ग्रैंड चाइल्ड मिशिका अ वेरी हैप्पी बर्थडे. प्रिंसेस को 2 साल हो गई हैं आज, तो चलिए प्यारी सी मिशिका को वेरी हैप्पी बर्थडे. बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा वर्षा, पापा यश्वीन, नाना नानी, साथ में हैं दादा दादी, मासी रक्षा, लवना, सभी जगेसर एंड हुलवन फैमिली ऑफ फ्लैक. छोटी सी राजकुमारी को एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. और यहाँ पर आप कहती हैं, हेलो गुड इवनिंग, प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट गाना फॉर फ्रेंड रीना पुलवन. वी ऑल सैल्यूट हर करेज एंड कन्विक्शन फ्रॉम बेस्टीज लतिका, रेशमी, दिव्या एंड मनीषा. थैंक यू सो मच गाइज हमारा साथ देने के लिए. इफ़ यू वर्किंग, आपको बों कुहाज. और चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद आपने खाना खा लिया होगा और अभी आप बैठ कर आँखें बंद करके हमारी गीतों को सुनकर रिलैक्स कर रहे हैं, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ और इस रिलैक्सेशन वाले मोमेंट को जारी रखेंगे टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
3: महबूब को याद कर रही है तो महबूब की तस्वीर को निहारना और देखना ना भूलें और जहन में ये बात उतार लीजिए कि बस यही है आपका प्यार, इनसे ही जिंदगी भर का साथ चाहिए होगा और इनसे ही आप प्यार को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Already 8:31, खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है till 9 PM। उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना बड़े दिलवाला मूवी से लिया गया है। एंड चलिए उम्मीद करते हैं कि जितने भी सारे हमारे 90s लवर्स हैं आप इस गाने को बखूबी से एंजॉय करने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स 90s के गाने तो हमेशा दिल के करीब ही रहते हैं क्योंकि दे डोंट मेक सच सॉन्ग्स एनी मोर।

0: प्यार में गुजारिश तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक गुजारिश है जो थोड़ा नामुमकिन लगता है, वो ये है कि हम बस उन प्यार और उन लम्हों से कहे कि थोड़ा ठहर जाओ, और बस जाते हुए लम्हों को ठहरने के लिए अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जाते हुए लम्हों को हम ब्यूटीफुल मेमोरीज कहते हैं, और इन जाते हुए लम्हों को आप बस कैप्चर करने की कोशिश कीजिए अपने दिल में, और दिल में पनाह दीजिए, जगा दीजिए, और धीरे धीरे करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, और एक दिन आप पीछे पलट कर देखेंगे तो यही यादें काम आएंगी थोड़े से और आपको मुस्कुराहट देने के लिए, और कभी कभी आँख से आंसू भी निकल आते हैं जब उन यादों को लोग याद करते हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कि ये जाते हुए लम्हे ही मेमोरीज बन जाती हैं, यादें बन जाती हैं, और इसको सीज करने की कोशिश ना करें और इसको बंद करने की कोशिश ना करें। जितना आप रिलेशनशिप को ब्रीद करने देते हैं उतना ही आपका रिलेशनशिप खिलकर सामने आता है। इसलिए इन जाते हुए लम्हों को जाने दीजिए, क्योंकि पलटकर आप देखेंगे, जैसे हमने कहा, ये यादें बनकर खूबसूरत तरीके से निखर कर रिलेशनशिप में बहुत ही प्यार से आपका साथ देता रहता है थ्रू आउट द होल लाइफ। तो चलिए यहाँ पर विकी जी आपका साथ हैं, विक्रम भोलू, थैंक यू सो मच, नाइट ड्यूटी पर हैं विकी, विक्रम भोलू, अजय रामलगन। नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल द स्टाफ ऑफ एस एस ओवन हॉस्पिटल एम्बुलेंस स्टाफ, एम्बुलेंस डिपार्टमेंट, थैंक यू सो मच। श्रद्धा कपूर की तरह स्ट्रीम मूवी में हम विकी प्लीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन विकी थैंक यू ज़रूर कहेंगे। सो एक बार फिर से आपको थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर किसी का एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है, हाय दिव्या, नाइस सिलेक्शन, इन फैक्ट आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉप दीज वर्ड्स फॉर यू, आई लाइक टू लिसन टू यू, थैंक यू सो मच। इतने सारे आपने खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं कि आई फील सो कनेक्टेड विद यू राइट नाउ, थैंक यू सो मच। प्रिया दर्शिनी जी, हमारा साथ

के लिए एंड पॉजिटिव वाइब्स तो हमें आपसे मिल रही हैं एंड आपको भी शुभरात्रि एंड डोंट फील लो क्योंकि हम आपके साथ हैं, खुशी हो या गम साथ रहेंगे हम। और जैसे कह रहे थे, गम आते हैं आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि ज़िंदगी में खुशी भी आएंगी। और वैसे कहते हैं ना कि बुरी चीज़ और बुरा वक्त तो आता ही है, और बुरे वक्त की एक अच्छाई ये है कि वो जल्दी निकल जाता है। वैसे अगर आप बैठकर रियलाइज़ करें तो ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, और ये जो आप लो फील कर रही हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, और ये बहुत ही जल्द चला जाएगा और आप फिर से अपनी खुशी को हासिल कर ही लेंगे, इस पे मुझे पूरा यकीन है। सो प्रियादर्शिनी जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। तो चलूँ और हम भी चलते हैं, और वापस से मुलाकात होगी कल फॉर योर इवनिंग लाउंज सेम टाइम 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच। तब तक दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि। RM2 Radio Musti.

प्रणाम, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? कुछ ठीक ठाक? ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि म्यूजिक जो आपके हम सफर है। ऑफ कोर्स इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। सो नीतू की ओर से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, एंड रियली होप आपकी मॉर्निंग, आपका दिन अच्छे से बीता होगा। तो बस ये जो पल है, 3 घंटों का सफर भाई, टिल मिडनाइट आपके नाम, only for you with the best mix of music.

चलिए कुछ बात करते हैं अबाउट जिंदगी, खुशियाँ, खूबसूरती. लाइफ इज सो खूबसूरत, है ना? और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जितना प्यार हम बांटते हैं उतना ही वो बढ़कर हमारे पास लौट कर आता है. तो आइए आज हर गीत के साथ एक मुस्कान बांटिए, हर सुर के साथ किसी का दिल जीतिए और हर पल को खुशियों से भर दीजिए, क्योंकि म्यूजिक वो जुबान है जो बिना कुछ कहे दिलों को जोड़ देता है. तो मुस्कुराइए, स्माइल गुनगुनाइए और प्यार के रंगों में इस हसीन सफर का लुफ्त उठाइए.

दोस्तों खुशियां कभी खरीदी नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ एक प्यारी सी मुस्कान, एक मीठा सा लव्स और एक खूबसूरत गाना किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। आज का दिन म्यूजिक के नाम कीजिए, अपनों के नाम कीजिए और हर लम्हे को यादगार बनाते चले।

0: ऑल राइट इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। कुछ दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा,
0: नॉट लिसनिंग टू यू।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। नहीं नहीं, ये मैं पूरा गाना गाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि बस आपको यही कहना है कि हर दिल में प्यार की एक मीठी धुन छुपी होती है, बस जरूरत होती है उस धुन को महसूस करने की। आइए आज नफरत की हर दीवार गिरा दे और मोहब्बत के सुरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, क्योंकि म्यूजिक और प्यार मिलकर हर सफर को हसीन बना देते हैं।

जब दिल खुश होता है ना तो हर गीत और भी खूबसूरत लगता है, और जब गीत दिल से निकले तो हर गम हल्का पड़ जाता है। That's why प्यार बांटते रहिए, खुशियाँ बांटिए और हर पल को मेलोडियस बनाते चले।

It's your late night grooves on Radio Musti. अभी चून किए हैं द नीतू की तरफ से वेलकम स्वागतम. जिंदगी की असली दौलत दोस्त ना पैसा है और ना शोहरत, असली दौलत है अपनों का प्यार. चाहे आपके दोस्त हो, आपके परिवार, आपके बच्चे, हर किसी एक की मुस्कान और वो गीत जो हमें हर मुश्किल में हिम्मत देते हैं. आइए म्यूजिक के साथ हर दिल में उम्मीद का दिया जलाएं.

पहुंच गए हैं इन द सेकंड आवर यू माइट बी एट वर्क लेट नाइट ड्यूटी ओहो सो बो कुहाश पूरी टीम की ओर से एंड ऑफ कोर्स कल सुबह जब आप घर जाएंगे या फिर घर से निकलेंगे काम पर जाने के लिए तो एक चेहरे पर डेफिनेटली चाहे गम हो खुशी हो एक स्माइल लाना मत भूलना हाँ हर सुबह क्योंकि एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर गीत एक नई कहानी सुनाता है आज अपनी खुशियों को सिर्फ अपने तक मत रखिए उन्हें अपनों के साथ बांटिए क्योंकि बांटी हुई खुशी हमेशा दुगनी यू नो डबल ट्रिपल हो जाती है

आपने सुना होगा कि प्यार की कोई भाषा, लैंग्वेज, बार या कुछ नहीं है और म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती। दोनों सीधा सीधा दिल तक पहुंचती है। That's why हर सुर को महसूस कीजिए, हर रिश्तों को संवारिए और हर दिन को, हर रात को एक खूबसूरत सेलिब्रेशन बना दीजिए।

गाने अच्छे लग रहे हैं आपको, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप किसी को खुश देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? हम तो बस यही कहेंगे कि उसे एक प्यारी सी दुआ दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, एक मीठी सी मुस्कान दीजिए और एक दिल छू लेने वाला गाना सुनाइए। ओह दैट्स द बेस्ट। कभी कभी गाना भी वो कर जाता है जो हजार लव्स कर नहीं पाते। अगर

लवली गाना बस सुनकर मन खुश हुआ जा रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि म्यूजिक इज द बेस्ट थेरापी, सो आप इस थेरापी को अपनाइए और देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत बनती चली जा रही है, क्योंकि हर मेलोडी एक नई याद बनाती है और हर याद जिंदगी को और भी रंगीन बना देती है। इसलिए दिल खोल कर हंसिए, दिल से मोहब्बत कीजिए, जो भी करें म्यूजिक के जादू को अपनी रूह तक उतर

ये पल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशल, और आज का ये खूबसूरत पल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। हर गीत को अपनी धड़कन बना लीजिए और हर धड़कन को प्यार का पैगाम, क्योंकि जब म्यूजिक बोलता है तो दिल मुस्कुराने की वजह तुम हो। सुनिए गाना।

0: रहने का सबसे आसान तरीका है किसी और की खुशी की वजह बनना। आप तो मानोगे, डू यू एग्री? यस। और अगर इस सफर में साथ हो मधुर संगीत का आहा, तो हर लम्हा यादगार बन ही जाता है। तो आइए प्यार और मेलोडी के साथ इस खूबसूरत सफर को और हसीन बनाते चले।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

देखते ही देखते वक्त कैसे बदल गया, पता भी नहीं चला. ऑलरेडी इन द थर्ड आवर, लेट नाइट म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती. सो म्यूजिक सिर्फ सुरों का संगम नहीं है दोस्त, बल्कि जज्बातों का भी सफर है. ये हमें हंसना सिखाता है, रोना सिखाता है, और सबसे बढ़कर पल को जीना सिखाता है. इस सफर को प्यार के रंगों से सजाइए.

जब भी जिंदगी थोड़ी उदास लगे आप क्या करते हैं? कहीं अकेले बैठ जाते हो, रोना आता है, रो लेते हो, अपने गम को अपने साथ शेयर करते हो, या फिर म्यूजिक के साथ जुड़ जाते हो। जब भी जिंदगी थोड़ी सी उदास लगे तो अपना फेवरेट गाना चला दीजिएगा और उन लोगों को याद कीजिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं। ये काम आता है, ट्राई कीजिएगा। बस हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई गम ना आए, लेकिन अगर आए देन फेस इट एज अ चैलेंज, एक्सेप्ट कीजिएगा और देखिएगा कि जिंदगी कितनी क्लियर लगती है एंड देखिए कि कैसे एक ही पल में दिल फिर से खिल उठता है।

जो कहे कॉइंसिडेंस कहे आई डोंट नो, लेकिन हर फीलिंग, हर जो एक एक्सप्रेशन है, इमोशन है, बॉलीवुड के साथ जुड़ी रहती है ना। प्यार बांटने से कम नहीं होता है, बल्कि हर रोज और गहरा होता चला जाता है। बिल्कुल म्यूजिक की तरह, जो जितना सुनाया जाए उतना ही दिल के करीब हो जाता है। इसलिए हर दिन को मेलोडी और मोहब्बत का फेस्टिवल बनाते चलें।

देखते ही ये 3 घंटे कैसे गुजर गए, didn't know, क्योंकि आपका साथ इतना खूबसूरत रहा। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्त, इसके हर लम्हे को प्यार, अपनापन, हंसी और म्यूजिक के साथ जिए। किसी के चेहरे की मुस्कान बनिए, किसी के दिल की धड़कन बनिए और हर रोज एक नई मेलोडी के साथ अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कीजिए। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्यार बांटते चलिए। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 Radio Musti
2: Hit music only
3: Radio Musti feels a musti

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.